सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं गायन। फनकार हैं पंडित राजन साजन मिश्र।
1: एक प्राचीनतम राग से शुरू किया जाए जो ईश्वर की आराधना के लिए है, राग श्री। राग श्री का मतलब है विष्णु, श्री का मतलब है भगवान, और इसमें दो तीन रचनाएं हम लोग गाएंगे। पहली रचना झप ताल में है, 10 मात्रा, जिसके बोल हैं प्रभु के चरण कमल निस दिन सुमरिए।

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती में गायन। कलाकार थे पंडित राजन साजन मिश्र। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदी छायावादी काव्यधारा के चार स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कवित्री हैं, लेकिन गद्य भी उन्होंने पर्याप्त लिखे हैं जो अधिकतर स्मृतियों के रूप में हैं। उनके विगत के जीवन में जिन भाव प्रवण स्मृतियों ने उनके अंतर्मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है, उन यादों को उन्होंने अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं जैसे गद्य संग्रहों में स्थान दिया है। इन्हें कहानी नहीं कहेंगे, ये यादों की लकीरें हैं जो पत्थर की लकीरों की तरह उनके कोमल मन पर खींची हैं। ये सच्ची घटनाएं हैं जिन्होंने उन्हें भावनात्मक स्तर पर अत्यधिक उद्वेलित किया है, इतना कि उन्हें भुलाना उनके लिए संभव ना हुआ और खुद ब खुद यादों की ये लकीरें शब्द बनकर कागज पर उतर आईं। लेकिन श्रोताओं, इन गद्य कृतियों में भी महादेवी का जो स्वरूप उभरता है वो एक गद्यकार का नहीं बल्कि कवि का है। वे स्वभाव से ही कवि हृदय हैं और जो कुछ भी बोलती हैं वो कविता के अलावा और कुछ होता ही नहीं, माने कि उनकी भाषा ही कविता है। बहुत ही नाजुक, बहुत ही भावुक और बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व उभरता है उनका उनकी रचनाओं में। जिस तरह एक क्रौंच पक्षी का वध देखकर वाल्मीकि उद्वेलित हो गए थे और उनके मुख से विश्व का पहला काव्य फूट पड़ा था, उसी तरह एक चिड़िया, एक गिलहरी और एक गाय की पीड़ा भी महादेवी को उद्वेलित कर देती है। इतना फिर जो लिखती हैं वे, उसके नायक और नायिका ये मूक प्राणी ही होते हैं, कोई इंसान नहीं। उनकी कोमल स्मृतियों में ऐसी ही एक स्मृति है एक गाय की जिसका नाम गौरा था। उससे किस कदर जुड़ गई थी वे, इसे जानने के लिए सुनिए उनके रेखाचित्र गौरा का रेडियो नाट्य रूपांतरण।
2: गौरा मेरी छोटी बहन श्यामा के घर पली हुई बच्चिया का नाम है। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि अन्य गोवत्साओं से वह कुछ विशिष्ट ही हो गई थी। एक दिन की बात है।
3: दीदी, तुम्हें पशु पक्षी पालने का इतना शौक है, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती?
4: क्यों, उससे क्या होगा?
3: ये भी कोई बताने की बात है दीदी, आपका शौक भी पूरा होगा और दूध भी मिलेगा, आम के आम और गुटलियों के दाम।
4: तू भी ना श्यामा, हर चीज में बनिया बुद्धि लगाए रहती है बस।
3: क्या दीदी, तुम भी ना

0: श्यामा की बात गलत न लगी मुझे। वैसे भी उसे हम बचपन से ही व्यवहारिक बुद्धि वाली मानते थे, दुनियादारी की समझ रखने वाली, मेहनती और कर्मशील। यूं तो खाने पीने की समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं अच्छा लगा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। लेकिन गौरा मुझे भा गई थी। श्यामा का भाषण सुनकर मैंने ध्यान से उसे देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडोल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे से सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखुड़ियों के जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर तक काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूछ, सब कुछ जैसे एक सांचे में ढला हुआ था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर रोप दिया गया हो। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगता मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही उसको पालने के संबंध में मेरी दुविधा मेरे निश्चय में बदल गई।
1: अरे महादेव
2: जी,
1: अरे जरा जल्दी से आरती का थाल तो बना ले, गाय घर में ऐसे थोड़ी ही आएगी।
2: अभी लाया बीबी जी, रुकिए बस दो मिनट।
1: रुक रुक रुक, थाल नहीं, घी का चौमोखा दिया भी जला ले।
2: जी बीबी जी जी।
1: अरे अरे ठहर तो सही, पूरी बात तो सुन।
2: जी जी।
1: बगीचे में से लाल और सफेद गुलाब के फूल भी तोड़ ले। हाँ। और फटाफट माला बना ले।
2: अब जाऊं बीबी जी।
1: हाँ हाँ, अब जल्दी जा। और सुन सुन सुन।
2: हाँ हाँ,
1: रसोई में से दही पेड़ा भी ले आना, लक्ष्मी आई है घर में।
2: हाँ बीबी जी, हाँ अब तो हो गया ना बीबी जी, जाऊं।
1: हाँ हाँ, सब हो गया, अब तू जा जल्दी, लेकिन हाँ जल्दी लेके आना सारा सामान।
2: जी जी।
0: गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तो मेरे परिचितों और परिचायकों में श्रद्धा का ज्वार उमड़ पड़ा। उसे गौरांगनी नाम दिया गया, जिसे बोलचाल में हम गौरा कहने लगे। बहुत बहुत ही प्रसन्न दिख रही थी वो। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों से जब आरती के दिए की लौ प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तो कई दियों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों। गौरा बहुत ही प्रिय दर्शना थी, विशेषकर उसकी आंखों का तरल सौंदर्य। उसकी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता। गाय के नेत्रों में हिरणों के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है और न आतंक। महात्मा गांधी ने कहा था, गाय करुणा की कविता है। क्यों कहा था? यह उसकी आंखों को देखकर ही समझा जा सकता है। गौरा की अलग मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। वाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने व्रंत पर हौले हौले हिलना दृष्टि का उत्सव है। गौरा कुछ ही दिनों में हम सब से इतनी हिल मिल गई कि कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे से निकल जाते, उसके पैरों में खेलते रहते, पक्षी उसके पीठ पर तथा उसके माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजालते, वह स्थिर खड़ी रहती और उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती।
1: महादेव, गौरा को कुछ खिलाया कि नहीं?
2: खिलाया तो सब है बीबी जी, पर देखिए ना।
1: क्या देखूं?
2: आपके मोटर की आवाज कैसे पहचानती है, चिल्ला चिल्ला कर आसमान सिर पर उठा लेती है। अब आपके हाथ से कुछ खाएगी तभी तो मानेगी।
0: ऐसी थी गौरा, मोटर की तो छोड़िए, हम सबको वह हमारे पैरों की आहट से पहचानती थी। यहां तक उसे अपने भोजन का समय पता होता, और समय पर यदि भोजन न मिलता तो रंभाना शुरू कर देती। जब हम दूर जाने लगते तब बहुत देर तक गर्दन घुमा घुमा कर देखती। हर बात के लिए उसके पास आवाज तो बस एक थी, लेकिन उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती थी। देखते ही देखते एक साल बीत गया।
1: हाय राम, कितना सुंदर बछड़ा है रे।
2: हाँ बीबी जी, इसका रंग तो देखिए, लाल भक जैसे गेरू का पुतला हो। क्यों ना इसका नाम लाली रख दे।
1: चुप रहे महादेव, पगला कहीं का। हम इसका असाहित्यिक नाम रखेंगे।
2: क्या बीबी जी,
1: तू नहीं समझेगा महादेव। एक काम करते हैं, हम इसका नाम लाल मणि रखते हैं।
2: हाँ हाँ,
1: कैसा रहेगा?
2: हाँ बीबी जी, बहुत बढ़िया रहेगा। हमारा एक दोस्त था,
1: हाँ?
2: उसका भी नाम लाल मणि था, बड़ा मस्त था, और ये भी मस्त बछड़ा है।
1: हाँ।
0: लालमणि अपनी माँ से बढ़कर सुंदर था। प्यार से हम उसे लाल कहकर पुकारते थे। उसके गेरुए लाल रंग पर, माथे पर अंकित पान के आकार का श्वेत तिलक बड़ा ही सुहाता था। चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय बने थे। ऐसा लगता था जैसे गेरू की वत्स मूर्ति चांदी के आभूषणों से अलंकृत हो। गौरा और लाल जब साथ होते तो लगता मानो हिमराशि के बगल में जलता हुआ अंगारा रखा हो। हमारे घर में दुग्ध महोत्सव शुरू हो चुका था। सुबह शाम मिलकर गौरा लगभग 12 सेर दूध देती। लाल मणि के लिए कई सेर दूध छोड़ देने के बाद भी इतना दूध बच जाता कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक पर मानो दूध नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य ही उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे एक बर्तन रख देता, किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों की तरह। वे शिष्टता पूर्वक अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहते, फिर माप माप कर सबके बर्तनों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के बाद वे उल्लासपूर्वक उछलने कूदने लगते।
1: महादेव, ओ महादेव!
2: आया बीबी जी, आया आया आया जी। बोलिए बोलिए बीबी जी।
1: ये देख तो सही, कुत्ते बिल्ली कहाँ रह गए? गौरा बुला रही है उन्हें।
2: बीबी जी, बीबी जी, ऐसी गाय नहीं देखी मैंने अपनी जिंदगी में। जैसे माँ अपने बच्चे को खाने के लिए बुलाती है ना, वैसे ही ये कुत्ते बिल्लियों को बुलाती है, सबको अपना बच्चा समझती है।
1: सचमुच महादेव, बड़ी अच्छी है हमारी गौरा।
2: हाँ बीबी जी, बहुत अच्छी है।
1: महादेव
2: जी। बीबी जी,
1: कोई दूध धोने वाला ढूंढना पड़ेगा। शहरी नौकरों को तो कुछ आता नहीं, और गांव के नौकर भी घंटों लगा देते हैं दूध निकालने में।
2: वे भी क्या करें बीबी जी, सालों से शहर में रह रहे हैं, सबके हाथ पांव नाजुक हो चुके हैं, दूध दोने की तो आदत सबकी छूट चुकी है।
1: महादेव, क्यों ना हम पुराने वाले ग्वाले से बात करें।
2: बीबी जी, कौन वो जो गोरा के ब्याने के पहले हमारे यहाँ दूध देता था?
1: हाँ हाँ, वही। उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है ये, और भरोसेमंद आदमी भी है। जो मेहनताना मांगेगा हम उसे दे देंगे।
2: हाँ बीबी जी, बोल देता हूँ मैं। जी बीबी जी।

0: नमस्कार नमस्कार बीबी जी।
1: नमस्कार बबलू, आओ आओ बैठो।
0: जी
1: कैसे हो तुम?
0: सब आपकी कृपा है बीबी जी। सुना है आप हमें याद कर रही थी।
1: हाँ हाँ याद तो कर रही थी। वो क्या है बबलू की गौरा का दूध दोहने की समस्या थी, तो क्या तुम?
0: बबलू के रहते चिंता काहे की बीबी जी। अरे धन्य भाग हमारे जो फिर से आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है।
1: चलो ठीक है, पर ये बताओ कि पैसे कितने लोगे?
0: कैसी बात करते हैं आप बीबी जी। अरे सेवक हूँ आपका, गाय धोने के लिए पैसे का मोल भाव करूंगा।
1: अच्छा।
0: अरे जो भी आप आशीर्वाद समझ के दे दीजिएगा बबलू लेगा।
2: इस तरह हमारी दूध दुहने की समस्या का भी समाधान निकल गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2-3 मास बाद
1: महादेव ये हाँ, देखना।
3: हाँ बीबी जी।
1: क्या हो गया हमारी गौरा को? ऐसा सुंदर स्वस्थ शरीर सूखकर कांटा हो गया है।
3: हाँ बीबी जी, कुछ खाती भी नहीं है, होदी में मुंह नहीं डालती, पूरा शरीर ढीला हो गया है। मुझे तो लगता है बीबी जी किसी ने टोटका कर दिया है इसके ऊपर।
1: हट बेवकूफ कहीं का, कोई टोटका नहीं हुआ, हमें इसे डॉक्टर को दिखाना होगा। तू जा जल्दी
3: जी,
1: डॉक्टर साहब को बुला के ला।
3: मैं जाता हूँ बीबी जी।
2: मैंने गौरा को अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया। कई दिनों तक अनेक डॉक्टर, अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि से उसके रोग का कारण व निदान खोजते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि
1: क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर गौरा को बीमारी क्या है?
4: मैडम बीमारी तो कुछ नहीं है गाय को।
1: फिर वो इतनी सूखती कैसे जा रही है?
4: सुई।
1: हाँ हाँ तो लगाइए ना सुई, किसने रोका है आपको?
4: नहीं नहीं नहीं, सुई लगानी नहीं है मैडम, गाय को किसी ने सुई खिला दी है।
1: क्या?
4: हाँ, और अब ये बचेगी नहीं। धीरे धीरे करके इसके ब्लड सर्कुलेशन के जरिए ये सुई उसके दिल तक पहुंच जाएगी और फिर
1: मगर ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, दाना चारा तो हम खुद देखभाल करके देते हैं उसे।
4: नहीं नहीं नहीं मैडम, दाने चारे के साथ गई सुई तो गाय के मुंह में ही छिदकर रह जाएगी। यह सुई दाने चारे के साथ नहीं खिलाई गई है।
1: फिर
4: ये तो किसी दूसरे तरीके से उसके शरीर में सुई गई है।
2: मेरे कुछ समझ में ना आ रहा था, गाय सुई कैसे खा सकती है? अगर कोई खिलाएगा भी तो सचमुच उसके मुंह में छिदकर रह जाएगी, वह शरीर के भीतर कैसे पहुंचेगी? अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए असंभव थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते और अवसर मिलते ही गुड़ में लपेटकर उसे सुई खिला देते हैं। गाय की मर जाने पर वे फिर से उन घरों में दूध देने लगते हैं। उधर सुई की बात चलते ही ग्वाला एकदम से अंतर्धान हो गया। इससे हमारा संदेह विश्वास में बदल गया। अब आरंभ हुआ गौरा का मृत्यु से संघर्ष, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके बचने की संभावना कम हो सकती है, अतः नित्य कई कई शेर सेबों का रस निकाला जाता और नली से गौरा को पिलाया जाता। ताकत के इंजेक्शन दिए जाते, पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी और मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता। पर गौरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन व पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों पर पानी की दो बूंदें छलकने लगती। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी।
3: बीबी जी, आज आपने सवेरे से कुछ नहीं खाया।
1: क्या करूं महादेव, मेरे मुंह में निवाला ही नहीं उतरता।
3: सब कुछ तो किया बीबी जी आपने, इतना तो कोई इंसानों के लिए भी नहीं करे। लखनऊ कानपुर तक के डॉक्टरों को बुलाया आपने।
1: देखना कैसे बुझ गई है इसकी चमकीली आंखें। अब तो सेब का रस भी इसके कंठ में नहीं उतर रहा है। हे भगवान।
3: बीबी जी रोइए मत, बीबी जी।
1: गौरा।
3: बीबी जी रोइए मत, बीबी जी।
2: मैं समझ गई कि गौरा कांत अब निकट आ गया है। मैं उसे बचा तो नहीं सकती थी, पर अब मेरी इच्छा यही थी कि उसके अंतिम समय में मैं उसके साथ रहूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं गौरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधों पर रखा, वैसे ही वह एकदम से पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बांह पर सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को वेध कर बंद कर दिया था।

0: जिन्होंने कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया,
1: जिन्होंने हमें जीवन में आसमान की बुलंदियों को छूना सिखाया।
0: अब हम बने उनका सहारा जो पहले थे हमारा सहारा।
1: बचपन में जिन्होंने दी हमें खुशियाँ, वृद्धावस्था में दें हम उन्हें खुशियाँ।
0: अपने वृद्धजनों के प्रति समर्पित रहें, वृद्धजनों का सम्मान करें।
1: शुरुआत आज से ही करें, अपने घर से ही करें।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ भारती। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद, उनकी कलम से लिखी हुई कहानियां ऐसी लगती हैं जैसे हमारे आसपास की ही कहानी हो। मनुष्य का अधिकार उसका वर्चस्व होता है, और अगर अधिकार ना हो तो उसका मान सम्मान भी नहीं होता है, और जहां मान सम्मान होता है वहां अधिकार होता है। कुछ इसी तरह की ताने बाने से बुनी हुई मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है सुजान भगत। तो आज के कार्यक्रम में हमने कहानी चुनी है सुजान भगत।

अक्सर सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। दिव्य समाज की भांति वो पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छीट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो ही जाता था। 3 साल से लगातार एक लगा रहा था। उधर गुड़ का भाव तेज हो गया, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए थे अब उसके। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धुनी जलने लगी। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हलके के हैंड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग का अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता था। महतो मारे खुशी के फूले नहीं समाते। धन्य भाग हमारे, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह नहीं खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जुबान नहीं सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डॉल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा लिया। एक ढोलक आ गई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा।

अब सब सुजान के दम पर जुलूस निकलने लगा। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम नहीं थी। कभी हाकिम लोग चखते तो कभी महात्मा। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे तो रोटी चाहिए, साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब पारावार ना था, सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग ये ना कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में 3 कुएं थे, बहुत से खेतों में पानी नहीं पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए हों। जो काम गांव में किसी ने न किया, वो बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने करके दिखाया था। एक दिन की बात है, गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान के ही द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत इच्छा हो गई। वो अच्छा अवसर देखकर चलने को तैयार हो गया। अपनी स्त्री बुलाकी से उसने कहा। बुलाकी ने जवाब दिया, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। तब सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होता है कौन जाने, धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं। अब जे जिंदगानी का क्या भरोसा, चलना है बस चलना है। बुलाकी ने कहा, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान ने भी फरमान सुना दिया, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपया आ जाएगा, उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी भी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति नहीं बिगाड़ना चाहती थी। प्रातःकाल

0: एक द्वेषी ने तो कह दिया, अरे कहीं गड़ा हुआ धन पा गया होगा। कई तरह की बातें होती। इस पर चारों ओर से उस पर बौछार पड़ने लगी। तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए हैं, यही उनके हाथ लगा है। अरे भैया, ये धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो, क्यों ऐसी ईख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को तो देते हैं। सुजान महतो अब सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं, वही विचार सुजान ने भी अपना लिया। वो बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हैं तो वो रोज स्नान नहीं कर पाता था, लेकिन पर्वों के दिन जरूर जाता। भजन भाव उसके घर होने लगे। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य हो गई। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने नहीं थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ है, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा होता है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटों से वो परिस्थितियों को तौलता था। अब वो उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यूं कहें कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश कर लिया था। ब्याज का पैसा लेते हुए उसे आत्मग्लानी होने लगी। यहाँ तक कि गायों को दोहते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए। उसका रोया दुखी हो जाता। वो गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी, लेकिन अब उसको इससे घृणा होने लगी। पहले मजदूरों से काम लेता और कम मजदूरी देता, लेकिन अब वो पूरा का पूरा देता था। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियां कसते। यहाँ तक कि स्त्री बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से उसे कोई प्रयोजन नहीं था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अब घर के अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, क्या लेना है, किस भाव का क्या चीज है, कैसी बिकी, महत्वपूर्ण बातों में भी भगत की सलाह नहीं ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने नहीं पाता था। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर से ही सारा मामला तय कर लेती थी। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता, पर अपने घर में घट जाता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाते देखते तो लपक कर खुद उठा देते। यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए भी आग्रह करते, मगर अधिकार उसके हाथ में नहीं था। वो अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता बन गया। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। बाहर एक भिक्षुक आया। वो चिल्ला चिल्ला कर दान मांग रहा था। इतने में बड़ा लड़का भोला आया। जोर से माँ से बोला, अम्मा महात्मा कब से गला फाड़ रहे हैं, दे दो ना कुछ, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, देखो तो सही। बुलाकी ने भी उपेक्षा के भाव से कह दिया, क्या भगत जी के हाथ में मेहंदी लगी है, उन्हीं से कह दो कुछ दे देंगे। चौपट करने लगे हैं माँ, और क्या, रहने दो, कुछ का कुछ दे देंगे। तब भोला भी बोल दिया, दिन भर एक न एक खुचड़ निकालते हैं, 100 दफे कह दिया है कि घर गृहस्थी के मामले में अब ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। बुलाकी ने कहा, मैं जानती हूँ कि इनका ये हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देंगे। अच्छा, तब भोला ने कहा, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए हैं कि कोई काम ना कर सके। बुलाकी ने भी आपत्ति की, बेटा भोला, ये तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। अब देखो ना, बैलों को सानी देते हैं, गाय दोहते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते रहते हैं। माँ बेटे यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते नहीं देखा तो स्वयं उठकर अंदर चले गए और कठोर स्वर में बोले, सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को, द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा है, अपना काम दिन भर कर लेना, एक घड़ी के लिए भगवान का काम भी कर लो। बुलाकी ने भी उपेक्षा से कह दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम तो बैठे हो भगवान का काम करने, क्या घर भर भगवान ही काम करेंगे क्या? सुजान ने कहा, कहाँ रखा है आटा, लाओ मैं ही निकाल कर दे दूं, तुम तो बैठो और रानी बन के राज करो। बुलाकी ने तब जोर से कहा, देखो जी आटा मैंने मर मर के पीसा है, देना है ना अनाज दे दो, ऐसे लोगों के लिए मैं पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान ने सुना और भंडार गृह की ओर चल दिए। छोटी सी छाबड़ी को जौ से भरकर निकाल लाए, जौ शेर भर से कम नहीं था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोला को दिखाने के लिए ज्यादा अनाज लेकर आया, लेकिन वो भिक्षुक को देता उसके पहले ही भोला ने छबड़ी उसके हाथ से छीन ली और त्योरिया चढ़ाकर बोला, संत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है, फालतू नहीं देंगे। सुजान ने भी कहा, मैं भी तो बैठा नहीं हूँ, काम करता हूँ। भोला ने भी कहा, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती, हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं और पति पानी बना रहे हैं और आप लुटा रहे हो, क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है आपको, आप तो बस भगवान भजन में डूबे रहो। सुजान ने इसका उस समय कोई जवाब नहीं दिया, बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। सुजान पेड़ के नीचे जाकर विचारों में मगन हो गया, अपने ही घर में उसका अनादर, अभी वो अपाहिज तो नहीं हुआ है, हाथ पांव भी नहीं थके हैं, घर का कुछ ना कुछ काम तो करता ही है, उस पर यह अनादर, ये घर तो उसी ने बनाया, ये विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा, अब तो वो द्वार के कुत्ते के समान हो गया, पड़ा रहे घर वाले जो रूखा सूखा दे दें, खाकर पेट भर लें, क्या ऐसा जीवन सही है, धिक्कार है ऐसे जीवन को, और सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। विचारों के मंथन में सुजान डूब गया। संध्या हो गई, भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर के लाया, सुजान ने नारियल दीवार से टिकाकर रख दिया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी, सुजान पेड़ के नीचे से लेकिन उठा नहीं। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ, भोला बुलाने गया लेकिन भूख नहीं है कहकर उसने भोला को लौटा दिया। तब स्त्री बुलाकी आ गई और मनुहार करने लगी, खाना खाने क्यों नहीं चलते, जी तो अच्छा है ना, क्या हो गया? सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था, ये भी लड़कों के साथ है, ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया, इसके मुंह से इतना भी नहीं निकला कि ले जाते हैं तो जाने दो, लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है, दिन को दिन रात को रात नहीं समझा, भादों की अंधेरी रात में मढ़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था, जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम नहीं लेता था, और अब मेरा घर, मेरे घर पे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं किसी को भिक्षा दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए, आग थोड़ी लगा रहा हूं घर में, कानून से भी मेरा अधिकार है, मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूं, इसमें किसी का क्या जाता है, और अब इस वक्त ये मनाने आई है, कभी कड़ी निगाह से नहीं देखा, रुपए पैसे लेना देना सब इसके हाथ में था, अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझे से घमंड करती है, अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू हूँ, लुटाऊं घर फूकूं घोंगा हो गया हूँ, मेरी किसे परवाह है। तब लड़के ना थे, जब बीमार पड़ी थी तो मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले जाता था, आज इसके बेटे हैं और ये उनकी माँ, हाँ मैं तो बाहर का आदमी हूँ, मुझे घर से क्या मतलब। उसके मन में ये विचार तो चल रहे थे, लेकिन उसने बुलाकी से कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा, अब खा पी कर क्या करूंगा बुलाकी, हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करती हो, रख दे तेरे बेटे दूसरी बार खा लेंगे। बुलाकी ने भी मनुहार किया, कैसा करते हो तुम तो, जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो, सच कहा है बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है, अब भोला ने इतना ही तो कहा था ना कि इतनी सारी भीख मत ले जाओ, या और कुछ कहा था बताओ? हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया था, तुम्हें तो मजा आया। जब वो ऊपर से दो चार डंडे लगाता तब तुम्हें ठीक लगता, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होती। बुलाकी ने भी जवाब दिया, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी सादी औरत पाई है, जिस बल चाहते हो बैठा लेते हो। ऐसी मुजोर होती ना तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निबाह ना होता। सुजान ने भी कहा, हाँ भाई वो तो मैं कह रहा हूँ कि देवी थी और हो, मैं ही राक्षस हूँ और दैत्य हो गया हूँ, तुम सही तुम्हारे कमाऊ बेटे सही। बात नहीं बनी, सुजान नहीं उठे और बुलाकी हार कर घर लौट गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था, अब भी यही समझता था, परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया इसकी उसे खबर नहीं थी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते हैं ये बात उसे भ्रम में डाली थी। लड़के उसके सामने बैठते नहीं थे, खाट पर नहीं रहते थे, उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण नहीं था। हाँ, पर आज उसे ये ज्ञात हो गया कि वो केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं था। अब तक जिस घर में राज करता था उसी घर में पराधीन बनकर वो नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वो इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता, मंदिर का पुजारी बनकर नहीं रह सकता। ना जाने कितनी रात बाकी थी, सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर दिया। सारा गांव सो रहा था, सुजान करवी काट रहा था। इतना श्रम उसने पहले नहीं किया था, लेकिन उसने काम भी नहीं छोड़ा था। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर आंगन में दंग रह गई। जोर से चिल्ला के बोली, क्यों रे भोला, आज रात भी कटिया ही काटता रहा क्या? कितना कहा बेटा, जी से जहान है, पर तू तो मानता ही नहीं, रात में सोया भी नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, हाँ हाँ वो सोता कब है, जब देखता हूँ काम करता है, ऐसा कमाओ संसार में और कौन होगा। इतने में भोला आंखें मलता बाहर निकल आया, ढेर देखकर वो भी आश्चर्यचकित। माँ से बोला, माँ शंकर आज बड़ी रात को उठा था। बुलाकी ने कहा, नहीं रे वो तो सो रहा है, मैं समझी तू काटा है। माँ मैं तो सवेरे उठ ही नहीं सकता, दिन भर काम करा लो, रात को नहीं उठा जाता मुझसे। बुलाकी, तो क्या तेरे दादा ने काटी है इतनी सारी? मालूम नहीं। दोपहर हो चुकी थी, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन था। भोला थक गया, उसकी बार बार इच्छा हुई कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ नहीं कहा। सबको आश्चर्य हो रहा था, दादा इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं। आखिर डरते डरते बोल ही दिया, दादा अब तो दोपहर हो गई, हल खोल दें। सुजान ने कहा, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ, मैं सांझ को फेंक दूंगा दादा। सुजान ने नहीं सुना, तुम क्या फेंक दोगे बेटा, देखते नहीं खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है, और इस खेत में 20 मन का बीघा होता था, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए, भोला बैलों को लेकर घर चला गया और सुजान डांड फेंकते रहे। आधे घंटे बाद वो घर आया, थकान का नाम नहीं था, लेकिन नहा खाकर आराम करने के बदले उसने बैलों को सहलाना शुरू किया, पीठ पर हाथ फेरा, पैर मले, बैलों की तो पूंछे खड़ी हो गई। सुजान की गोद में सिर रखकर उन्हें बहुत सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद बैलों को ये आनंद प्राप्त हुआ था, उनकी आंखों में कृतज्ञता भर गई, मानो वो कह रहे हों, अब हम तुम्हारे साथ हैं, दिन रात काम करेंगे। अन्य किसानों की भांति भोला अभी कमर सीधी ही कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठा लिया, खेत की तरफ चल दिया, और दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जा रहे थे, जैसे कि उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी हो। भोला ने मढ़ैया में लेटे लेटे पिता को आते देखा, पर उठ नहीं पाया, उसकी हिम्मत छूट गई, कभी इतना परिश्रम नहीं किया था। उसे तो बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे तो बस ज्यों का त्यों चला रहा था, क्या मालूम था कि ये सब चीजें क्या होती है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए हैं। तो भोला ने भी कह दिया, जाने दो अम्मा, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाएं हुई, निकल गई सारी भक्ति, बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है आदमी, काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर से साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं, उनका आदर सत्कार होता है। अब की उसकी खेती ने सोना उगला है, बखारी में तो अनाज रखने की जगह नहीं है। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, आज उसी खेत में 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना, खलिहानों में सतयुग का राज, जगह जगह अनाज के ढेर। यही समय है जब किसानों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत को घेरे हुए थे। आज उनमें वो भिक्षुक था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा था। अचानक भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, आप ही के पास पहले आया हूँ। ऐसा है, जाओ, तुम्हारे सामने ये ढेर लगा है, इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जाते बने ना, ले जाओ। भगत ने नम्रता से कहा। भिक्षुक ने शुभ्ध नेत्रों से ढेर को देखा। जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे भगत जी, उतना ले लूंगा। भगत ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे अधिक भरने का उसे साहस नहीं था। भगत उसके मन का भाव समझ गए, बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा लेगा भिक्षुक जी, और ले लीजिए। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना काफी है। भगत ने कहा, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर कातर दृष्टि से देखने लगा। उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी? मैं जो कहता हूं वो करो, तुमसे जितना उठाते बने उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज तो भर लिया, लेकिन भोला ने अगर गठरी नहीं उठाने दी तो कितनी ज्यादा बेइज्जती होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं हुई। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अपने हाथों से अनाज भरा और गठरी बांध कर बोले, ले जाओ, अब ये आपका है। भिक्षुक ने कहा, बाबा, इतना तो मुझसे नहीं उठेगा। भगत ने भी जोर देके कहा, अरे, इतना भी नहीं उठेगा, बहुत होगा, तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो कि नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, गठरी भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। तब उसने भगत से बोला, भगत जी, ये मुझसे नहीं उठेगी, और उसने हाथ जोड़ लिए। भगत ने कहा, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी दूर है भगत जी, अमूला का नाम तो सुना है आपने। बस भगत जी क्या करते, उन्होंने कहा, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। फिर क्या था, ये कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे पीछे चल दी। देखने वाले भगत का ये पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा है। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर से पा लिया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वो बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वो जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्भ नेत्रों से देखा और बोला, बेटा, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, ध्यान रहे कोई भी यहां से खाली हाथ न लौट पाए, जिसको जितना चाहिए उससे ज्यादा देना। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था और अपना अधिकार बता दिया था। सच कहा है किसी ने, ये अधिकार बहुत बड़ा होता है और कर्तव्य उससे बड़ा। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी सुजान भगत। अब अपनी रेडियो मित्र भारती को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सुनो कहानी समेटने की। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अगर आपको 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
3: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
2: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।

90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला, लेकर आई हूँ आज का भारत भारती कार्यक्रम। श्रोताओं, विगत दिनों सुप्रसिद्ध गायिका नूरा सिस्टर हमारे शहर पधारी। इस मौके पर आइए सुनवाते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए गायन की रिकॉर्डिंग।

जो तेरे फकीर होते गए कितने रोशन जमीर होते गए, जो तेरे दुबार करते हैं वो हश्र तक इंतजार करते हैं। रिंदुत ने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार।

अपने अंदर किते रोंदा फिरे बेचारा। मजनू ताई उन्हूं पुछण लगा ते तू क्यों रोना यारा। तो कलंदर साहब कहिंदे मैं रोवां ना ते होर की करां। आंदा जिस दे नाल मैं रोजी मंगदा, आंदा जिस दे नाल मैं

वेखी प्यार ना करनियो नहीं ते तो सुनन वाली लाइना जी सुन के जी कसम खुदा दी तू मेनू प्यारा लगना ते तू ना

महबूब के दिल में तरस रता ना आया। सुनने वाली लाइन जी सुन के, बेपरवाह महबूब।

0: कलंदर दमादम मस्त कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर
1: दमादम मस्त कलंदर
0: हक दमादम मस्त कलंदर
1: दमादम मस्त कलंदर
0: हक दमादम मस्त कलंदर
1: दमादम मस्त कलंदर
0: हक दमादम मस्त कलंदर
1: दमादम मस्त कलंदर
0: हक दमादम मस्त कलंदर।

हक अली हक अली भाई हक अली हक अली हक अली हक अली भाई हक अली हक अली हक अली हक अली भाई हक अली हक अली हक अली हक अली भाई हक अली हक अली हक अली हक अली भाई हक अली हक अली हक अली हक अली

हुए को कुछ मिला है, न पुतखाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अधम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, नफी भी तेरे होने का पता है। जोल्फत में तुम्हारी खो गया है, उसी खोए हुए को कुछ मिला है, न पुतखाने न काबे में मिला है, मगर टूटे हुए दिल में मिला है। अधम बनकर कहीं तू छुप गया है, कहीं तू हस्त बनकर आ गया है। नहीं है तू तो फिर इनकार कैसा, न फिर भी तेरे होने का पता है। मैं जिसको कह रहा हूँ अपनी हस्ती, मैं जिसको कह रहा

मैं जिसको कह रहा हूं अपनी हस्ती। संगत भी अपने आप पे बहुत बड़ा पीर है जी। मैं जिसको कह रहा हूं अपनी हस्ती, मैं जिसको कह रहा हूं अपनी हस्ती,

अभी आप विगत दिनों भोपाल में आयोजित नूरा सिस्टर्स के कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। अब आज का भारत भारती कार्यक्रम हम खत्म करते हैं। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

तो ये था श्रोताओं आज का हमारा दोपहर का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए। हमारा प्रसारण यूं ही रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा। दीजिए अनुमति पूर्वाखले को और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 35 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्स्मत एवं भार्गव शौनक, देवता हैं आपानपात और छंद है त्रिष्टु।
1: उपेम सृक्षि वाजयुर् वचस्याम चनो दधीत नाद्यो गिरो मे अपाम नपादा सुहेमा कुवित्स सुपेश सस्करति जोशी शद्धि। अन्न और बल की कामना से हम इन स्तुतियों का उच्चारण करते हैं। द्रुतगामी अपान पात अग्निदेव हमारी स्तुतियों को स्वीकार करते हुए अन्नादि को पुष्ट बनाए और हमें उत्तम रूप प्रदान करें। इमं स्वस्मै हृद आ सतष्टम मंत्रम वोचेम कुविदस्य वेदत अपाम नपादसुर यस्य महना विश्वान्यर्यो भुवना जजान। इन अपान पात देव के लिए हम हृदय से रक्षित मंत्रों का गान करें जिन्हें वे स्वीकार करें। इन अग्निदेव ने अपनी असुर संहारक शक्ति की महिमा से समस्त लोगों को उत्पन्न किया है। समन्या यंत्युप यंत्यन्याह समानमूर्वम् नद्यः प्रणन्ति तमूशुचिम् शुचयो दीदीवांसमपाम् नपातम् परि तस्थुरापः। कुछ जल प्रवाह पास आते हैं, अन्य प्रवाह दूर जाते हैं। नदियां संयुक्त होकर सागर में पहुंचती हैं। वहां वह जल अग्निदेव को चारों ओर से घेर लेता है। तमस्मेरा युवतयो युवानम मर्मृज्यमानाः परियन्त्यापः स शुक्रेभिः शिक्वभिः रेवदस्मे दीदाया निध्मो घृतनिर्णिगप्सु। जिस प्रकार अहंकार रहित स्त्री अपने युवा पति को अलंकृत करती है, उसी प्रकार दीप्ति युक्त स्वरूप वाले ये अग्निदेव जलमय प्रकृति में बिना ईंधन के ही बड़वाग्नि रूप में चमकते हैं। ये अग्निदेव हमें अपने तेजस्वी स्वरूप में धन प्रदान करें। अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीर देवाय देवीर दिधिशन्त्यन्नम् कृता इवोप हि प्रससरे अप्सु स पीयूषम धयति पूर्वसूनाम। तीन देवियां इडा सरस्वती तथा भारती दुख रहित अग्निदेव के लिए अन्न धारण करती हैं। जिस प्रकार जल के प्रवाह में कोई पदार्थ सुगमता से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये तीनों देवियां आगे बढ़ती हैं। अग्निदेव जल में उत्पन्न अमृत का सर्वप्रथम पान करते हैं। अश्वस्यात्र जनिमास्य च स्वरद्रुहो ऋषः सम्प्रिचः पाहि सूरीन् अमासु पूर्षु परो अप्रमृष्यम् नारातयो वि नशन्नानृतानि। इन अग्निदेव के द्वारा ही अश्व उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा है उसका जन्म होता है। यह अश्व उत्तम सुखदाई है। ये अग्निदेव आप हिंसकों तथा द्रोहियों के स्तोताओं की रक्षा करें। अपरिपक्व बुद्धि वाले, असत्य आचरण करने वाले तथा अदानी व्यक्ति इन अहिंसनीय अग्निदेव को नहीं प्राप्त कर सकते। स्व आदमे सुदुघा यस्य धेनुः स्वधाम पीपाय सुभवन नमति सो अपाम नपादूर्ज यन्नप्स्व अंतर्वसुदेयाय विधते विभाति। अपने आवास में रहने वाले अग्निदेव की गौएं सहज ही दुही जा सकती हैं। ये अग्निदेव अन्न की वृद्धि करते हुए उत्तम अन्न को स्वीकार करते हैं। ये देव जल के मध्य प्रबल होकर याजकों को धन देने की कामना से दीप्तिवान होते हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 35 से वाचन। कंठस्वर थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी के।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि उस विश्वास का नाम है जो कठिन समय में भी हमें संभाल कर रखता है। जब इंसान अपने कार्य करता हुआ परिणाम प्रभु पर छोड़ देता है तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। यही विश्वास भक्ति को शक्ति बना देता है।

जीवन में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि सही मार्ग पर चलना भी सिखाते हैं। गुरु का दिया हुआ ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अज्ञान के अंधकार में हमें रास्ता दिखाता है।

दीपक इसलिए सम्मानित नहीं होता कि वह स्वयं प्रकाश में रहता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों का अंधकार दूर करता है। इसी प्रकार महान वही है जो अपने ज्ञान, अनुभव और सद्भाव से दूसरों के जीवन में उजाला भर देता है।

यह तो प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक जीव को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का फल अवश्य ही मिलता है। जो व्यवहार हम अपने साथ नहीं चाहते, वो हमें किसी भी जीव के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें अवश्य मिलता है।

और इन्हीं भक्ति रचनाओं के साथ हमारा आज का ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं समाप्त होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: हेलो पप्पू पेजर बोल रहा हूँ। ए झंटू ले झटक दादा ना मटक और मेरी बात गले में सटक।
2: नमस्कार, मैं हूँ सतीश कौशिक। आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है बाबा खड़क सिंह पर।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। भारत की आजादी की लड़ाई में यदि मेरी पीठ में गोली लगती है तो मुझे सच्चा सिख मत समझना और सिख परंपरा के अनुसार मेरा अंतिम संस्कार भी मत करना। महान गुरुओं का महान शिष्य एक आदर्श संत सिपाही छाती पर गोलियां झेलता है, गर्व से चेहरा सामने रखता है, पीठ नहीं दिखाता। हम सिख किसी विदेशी को अपनी मातृभूमि पर शासन नहीं करने देंगे और कोई भी अन्याय सहन नहीं करेंगे। ये गर्जना थी महान स्वाधीनता सेनानी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के पहले अध्यक्ष बाबा खड़क सिंह की, जो उन्होंने लाहौर की एक जनसभा में की। सन 1868 को ब्रिटिश इंडिया के सियालकोट में खड़क सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता राय बहादुर सरदार हरि सिंह एक अमीर ठेकेदार और उद्योगपति थे। खड़क सिंह की आरंभिक शिक्षा दीक्षा सियालकोट में ही संपन्न हुई। यहां मिशन स्कूल में उन्होंने मैट्रिक पास की और फिर मुरे कॉलेज से इंटरमीडिएट। आगे की पढ़ाई के लिए वे लाहौर गए और पंजाब विश्वविद्यालय के पहले स्नातक समूह के छात्र के रूप में उन्होंने बीए पास किया। कानून में रुचि के चलते खड़क सिंह इलाहाबाद चले गए और यहां लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। किंतु पिता और बड़े भाई के एक के बाद एक हुए अवसान से वे दुखी हो गए तथा पढ़ाई बीच में ही छोड़कर सियालकोट लौट आए। यहां उन्होंने पारिवारिक संपत्ति और व्यवसाय की देखभाल शुरू कर दी। सन 1912 में सियालकोट में सिख शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। खड़क सिंह इसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। इसके बाद सन 1915 में तरन तारण में सम्मेलन हुआ। खड़क सिंह इसके अध्यक्ष चुने गए। परंपरा के अनुसार उन्हें 6 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर सम्मेलन स्थल तक पहुंचना था, किंतु उन्होंने पैदल ही यात्रा करके जाना पसंद किया और अपनी सादगी का परिचय दिया। जुलाई सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। हजारों सिख ब्रिटिश सेना की ओर से इसमें भाग ले रहे थे। सम्मेलन में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें अंग्रेज सेना की विजय के लिए कामना की जानी थी। अध्यक्ष के रूप में खड़क सिंह ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और स्पष्ट संकेत दिया कि हमारी मातृभूमि पर शासन करने वाले विदेशियों की हम अवज्ञा करेंगे, हमें इनसे मुक्ति पाना ही चाहिए।

खड़क सिंह अब सार्वजनिक जीवन से जुड़ चुके थे। उन्होंने सीधे सीधे समाज और देश हित में सोचना तथा काम करना शुरू किया। अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। खड़क सिंह इस घटना से दुखी होकर सीधे राजनीति में उतर गए। स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय लिया। सन 1920 में लाहौर में सेंट्रल सिख लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, अली बंधु और महात्मा गांधी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। खड़क सिंह ने इसके अध्यक्ष के रूप में गांधी जी का समर्थन किया और असहयोग आंदोलन में भाग लेने का निश्चय किया। सन 1921 में ही देश भर में फैले गुरुद्वारों की देखरेख और प्रबंधन के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ और खड़क सिंह इसके पहले अध्यक्ष चुने गए। इसी से जुड़ा एक रोचक प्रसंग भी है। स्वर्ण मंदिर में एक तोशाखाना यानी खजाना है, जिसमें कीमती वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। सन 1849 से इसकी चाबियां पंजाब सरकार द्वारा नामित अधिकारी के पास रखी जाती थीं, जो इसके देखरेख की जिम्मेदारी संभालता था। जब खड़क सिंह प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष चुने गए तो नियमानुसार राजकोष की चाबियां उन्हें हस्तांतरित होना चाहिए थीं, किंतु उसे ब्रिटिश उपायुक्त ने जब्त कर लिया था। इसके विरोध में खड़क सिंह ने तत्कालीन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक आंदोलन आरंभ हो गया जो कीज मोर्चा यानी चाबियों के मोर्चे के नाम से इतिहास में दर्ज हो गया। पंजाब सरकार ने खड़क सिंह को गिरफ्तार कर लिया, पर जन आंदोलन इसके बाद भी जारी रहा। नवंबर सन 1921 को शुरू हुआ आंदोलन 2-3 महीने जारी रहा। जन विरोध को देखते हुए तत्कालीन पंजाब सरकार ने 17 जनवरी सन 1922 को अकाल तख्त पर खड़क सिंह को सार्वजनिक रूप से स्वर्ण मंदिर के राजकोष की चाबियां सौंप दी। इसके साथ ही हजारों राजनैतिक बंदियों को रिहा भी किया गया। अखबारों ने लिखा कि गर्वित सत्ताधारी को बाबा खड़क सिंह की कठोर इच्छा शक्ति के आगे झुकना पड़ा। पूरे देश में इसकी बड़ी चर्चा हुई। महात्मा गांधी ने इस अनोखे चाबियों के मोर्चे की जीत पर बाबा खड़क सिंह को तार में बधाई संदेश भेजते हुए लिखा, भारत की आजादी के लिए पहली निर्णायक लड़ाई जीत ली गई। अंग्रेज अधिकारी अब उन पर नजर रखने लगे। 4 अप्रैल सन 1922 को बाबा खड़क सिंह को किरपाण बनाने का कारखाना चलाने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। किरपाण सिखों का धार्मिक प्रतीक है। एक साल की जेल में उन्हें सरकार विरोधी भाषण का हवाला देकर 3 साल की सजा और बढ़ा दी गई। उन्हें दूर डेरा गाजी खां की जेल में भेज दिया गया। यहां जेलर ने राजनीतिक कैदियों को गांधी टोपी और काली पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी थी। विरोध स्वरूप खड़क सिंह ने सारे कपड़े छोड़ दिए और केवल नाम मात्र के कच्छे में नंगे पीठ 4 जून सन 1927 को रिहा होने तक वो सजा भुगतते रहे।

0: करेंगे।
1: जेल में रहते हुए ही उन्हें सन 1925 में फिर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया था। सन 1930 में फिर नए चुनाव में उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, पर इसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्र की स्वतंत्रता के काम में जुट गए। सन 1928 में साइमन कमीशन के लाहौर दौरे पर बाबा खड़क सिंह ने विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। उन दिनों भविष्य में संवैधानिक प्रस्तावों पर पार्टी काम कर रही थी। बाबा खड़क सिंह ने इसके निर्धारण में सिखों के हितों और उनकी सहमति को सम्मान देने के लिए समुचित कार्रवाई की। सन 1931 में फिर से सरकार विरोधी भाषणों का आरोप लगाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। वो 6 महीने बाद रिहा किए गए, परंतु सन 1932 में फिर से गिरफ्तार कर 19 महीने के लिए कारावास में भेज दिए गए। कम्युनिटी अवार्ड का भी वे लगातार विरोध कर रहे थे और अपने भाषणों में ब्रिटिश सरकार की सांप्रदायिक नीतियों पर तीखा प्रहार करते रहे। सन 1935 में बाबा को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1940 के सत्याग्रह आंदोलन में वे फिर से सक्रिय हो गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इन सारी प्रताड़नाओं और बार बार की जेल यात्रा से उनकी निष्ठा और समर्पण में कोई अंतर नहीं आया। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर जब ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद सेना के बहादुर वीरों पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, तो बाबा खड़क सिंह इसके विरोध में आवाज उठाने वाले अग्रणी नेता थे। उनके बारे में कहा जाता था कि बदलती राजनीतिक धारा, जिसमें कई नेता बहकर बदल गए, अपना आधार छोड़ गए, ऐसे झंझावातों में भी बाबा खड़क सिंह एक अडिग चरित्र थे। अपने सिद्धांतों पर अविचल वे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति दृढ़ता से समर्पित थे और इसीलिए भारत का बंटवारा उन्हें रास नहीं आया। जब देश का विभाजन हुआ तो बाबा खड़क सिंह दिल्ली में ही बस गए। एक निरपेक्ष संत की भांति उन्होंने कोई भी पद नहीं स्वीकारा। वे बहुत अमीर खानदान से थे, पर पूरे स्वाधीनता के संघर्ष में उन्होंने सारी सुख सुविधा त्याग कर तपस्वी का जीवन जिया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 10 जुलाई सन 1949 को उन्होंने कहा था, ये वास्तविक गर्व का विषय है कि भारत विदेशी प्रभुत्व से मुक्त हो गया है। मैं अपनी मातृभूमि की स्थायी समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। 6 अक्टूबर सन 1963 को बाबा खड़क सिंह हमसे विदा हो अनंत में लीन हो गए। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: दोस्तों नमस्कार।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पर्यावरण संरक्षण और कानून विषय पर विषय विशेषज्ञ ओम शंकर श्रीवास्तव से मनीषा चतुर्वेदी की बातचीत।
0: प्रकृति की पुकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मनीषा, और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि विशेषज्ञ हैं श्री ओम शंकर श्रीवास्तव जी। आप भोपाल मध्य प्रदेश के अधिवक्ता हैं और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने अनेक राष्ट्रीय और शासकीय संस्थानों के विधिक सलाहकार की भूमिका निभा रहे हैं और निभाई है, जिनमें सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस सहित कई प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। पर्यावरण और वन कानून के क्षेत्र में आपकी विशेषज्ञता के कारण आप भारतीय वन अधिनियम 1927 के संशोधन समिति के सदस्य भी हैं, मध्य प्रदेश के शासन की पर्यावरण परिषद से भी जुड़े हुए हैं। भूविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और प्रबंधन जैसे विषयों में आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि आज की चर्चा को और अधिक सार्थक बनाएगी। तो आइए आपके साथ हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं।
2: धन्यवाद मनीषा जी।
0: सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत ही हम यही करना चाहेंगे कि पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने की जरूरत क्यों पड़ने लगी?
2: पर्यावरण और प्रदूषण की चर्चा एक साथ करने के पहले जरा हमें थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए
0: जी।
2: सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपने राष्ट्रगीत की, तो राष्ट्रगीत के वो जो दो छंद हैं वही अपने आप में काफी हैं पर्यावरण का बोध और प्रकृति के बोध के लिए। जैसे हम कहते हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, इसका अर्थ यही है। यही पर्यावरण बोध अपने आप में काफी है। अगर इस विचार को और इस सोच को और इसके शब्दों को अगर हम अपने आप में अगर ढाल ले, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण के साथ साथ प्रदूषण के बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं थोड़ा सा दो लाइन में इसको और विस्तार में बता दूंगा। सुजलाम साफ जल, सुफलाम साफ और स्वच्छ फल, मलयज शीतलाम एक शीतल की तरह, और सस्य श्यामलाम मतलब हमारी धरती हरी भरी हो, साफ जल हो, साफ अच्छे पेड़ पौधे हो। इसके साथ साथ सबसे आवश्यक है कि हरी भरी पृथ्वी हो। अगर ये सोच के साथ अगर हम चलते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की आवश्यकता एक साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: बिल्कुल। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं कि सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम की अगर हमें पर्यावरणीय बोध हो तो हमें ये चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे में आप क्या समझते हैं एक आम नागरिक को क्या भूमिका निभानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
2: अपनी सजगता से हम पर्यावरण के क्षेत्र में हम काफी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से कहा जाता था जब हम स्कूलों में भी थे, एक्ट लोकल थिंक ग्लोबल। आपको लोकली अपने काम करना है और बड़ी सोच के साथ काम करना है
0: जी।
2: हम एक आम व्यक्ति अपने आसपास में जब भी हमें ऐसा लगता है कि उनके पर्यावरण में चाहे उनके पास में किसी भी तरह का वायु प्रदूषण हो रहा हो, किसी भी तरह का जल प्रदूषण हो रहा है या और भी कोई प्रदूषण जो उसे उन्हें से देखने से लगता है, तो ऐसे विषयों पर चर्चा करें, परिवार में बातचीत करें, मोहल्ले में बातचीत करें, लोगों के साथ बातचीत करें, और ऐसे विषयों को अगर हम उठाते हैं तो तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्था हमारे शासन में भी व्यवस्था है, इसी तरह से ऐसे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इस पर काम करने के लिए तत्पर हैं।
0: एक आम नागरिक की तरह अभी अभी मेरे जहन में ये प्रश्न आया है कि ऐसी बहुत सारी चीजें देखकर हमारे को भी उलझन होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि अगर कोई पेड़ लगा है तो उसके आसपास कच्ची जो जमीन छोड़ी जाती है उसे जैसे मान लीजिए कि पूरी तरह से सीमेंट से पैक कर दिया गया। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों है, मैं चर्चा भी कर रही हूँ लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस पर कोई एक्शन लूँ तो वो कानूनी क्या जानकारी है जो, या ये कहें वो कैसे नियम है जिनके तहत हम कहीं शिकायत कर सकते हैं, हम आम नागरिक की तरह इस बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रह सकते।
2: आपने जो विषय उठाया बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों के आसपास लगभग 1 से 1.5 मीटर के रेडियस में मिट्टी छोड़ा जाना चाहिए। इस संबंध में आज से 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस पर एक गाइडलाइन इसमें दे चुके हैं। वर्ष 2013 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी ये विषय उठा था, क्योंकि वो सीधी सी बात है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं पेड़ भी सांस लेते हैं, ये सोच क्यों नहीं है कि वो पेड़ों के आसपास एक मीटर का दायरा हम छोड़ दें ताकि वो सांस ले सके। वहीं से तो अपने भोजन के लिए वो पानी लेंगे, वर्षा का जल वही आएगा, और वर्षा का जल अगर वहां आएगा नहीं, उनको जड़ पे पानी नहीं जाएगी, ये एक छोटी सी सोच है। तो ऐसे विषय को अगर आपको ऐसे देखने में आते तो बिना किसी देरी के उस संबंध में उसकी फोटोग्राफ लीजिए और तत्काल संबंधित विभागों को भेजिए और कार्रवाई होती है। अब लोग सजग हो गए।
0: आपने एक अभी नाम लिया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
2: राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में एक बहुत बड़ी पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका के साथ है। विश्व में 3 ऐसे देश हैं जहां एक्सक्लूसिव एनवायरमेंटल कोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके बाद से भारत। वर्ष 2010 में ये कानून बना था और उसके बाद से लगभग 5 बेंच है पूरे भारत में, जिसमें भोपाल में भी एक बेंच है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के पर्यावरण संबंधित जो भी मामले आते हैं इनका निराकरण यहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल में होता है।
0: हमारे स्टूडियो से बच्चों के लिए कार्यक्रम जाता है और उसमें एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि वो कैसे पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, तो वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, बच्चों की बात है, सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों में ये बोध विकसित करने की कोशिश करें कि वो पर्यावरण के प्रति अधिक सजग हो
0: जी।
2: उन्हें आने वाले जीवन अधिक जीना है
0: जी।
2: उनके लिए पूरी की पूरी धरती सब कुछ उनका है, भविष्य उनका है। एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि बच्चों को एक शब्द से जोड़ना चाहिए और उनको अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। पर्यावरण का उनके अधिकार है इंटरजेनरेशनल इक्विटी का, इंटरजेनरेशनल इक्विटी
0: जी।
2: आज जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो रहा है तब तक तो ठीक है, सदुपयोग होगा तब भी ठीक है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा, इसका मतलब ये कि आने वाले बच्चों के भविष्य को हम मारकर भविष्य से समझौता करके उनके हिस्से के जो संसाधन है उसका हम दुरुपयोग करने पर हम उतारू हो चुके हैं। तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, और बच्चों की क्या, माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को ये बताएं कि बच्चे आप लोग अपने अधिकारों की बात करो, इंटरजेनरेशनल इक्विटी की बात करो, अपने संसाधन की बात करो, अपने भविष्य की बात करो, और आप अपनी बात ये रखो कि प्राकृतिक जो भी संपदा है इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो हम बाल सभा कार्यक्रम में भी ये बात जरूर बताएंगे कि कैसे बच्चे भी अपने अधिकारों को पहचान कर पर्यावरण के संरक्षण में एक बहुत महती भूमिका निभा सकते हैं। सर, नीतियां बनाते समय स्थानीय जरूरतों को कैसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के केसेस को बहुत सारा देख रहे हैं?
2: पर्यावरण संबंधित नीति बनाने के लिए जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, तो भारत सरकार जब भी नीति बनाती है तो वो नीति के लिए राज्य सरकारों से उस संबंध में चर्चा करती है, और संबंधों में चर्चा करने के उपरांत भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाती है। हम किसी भी तरह की नीति की अगर हम बात करें, जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की बात करें, तो जितने हमारे कोस्टल एरियाज हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2011 नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन है, फिर 2019 नोटिफिकेशन है। इसके बाद से उस नोटिफिकेशन में ये आई कि स्टेट अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाएंगे, तो हर राज्य को स्टेट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनानी है। इसी तरह से अगर हम बात करें सैंड की, सैंड के रूल्स बनाएं, तो इस रूल्स में भी भारत सरकार जब नीति बनाती है तो राज्य सरकारों की भूमिका को तय करते हुए बनाती है। ये तो बात हो गई भारत

0: ये भी आ रहा है कि जब प्रकृति को लेकर कोई कानून या कोई नीति बनाई जाती है तो क्या वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनका भी इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या होता है?
1: पर्यावरण में फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फॉरेस्ट के जो पुराने कानून थे और अब और आने वाले दिनों में जो कानून बन रहे हैं उसमें संशोधन हो रही है, ऐसे में तो लोकल लोगों को देखकर और उनके हितों को देखकर बनाए गए हैं। जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है या पेसा का कानून था, तो ऐसे जो कानून है वो लोकल लोगों को देखते हुए उनकी जंगल के प्रति उनसे जुड़ाव और जंगल में किस हद तक उनके अधिकार है इन सब चीज़ों को देखकर तो कानून बनाए गए हैं। रही बात बाकी अगर हम पर्यावरण की बातें करते हैं तो उसमें भी जैसे कहीं पे इंडस्ट्री सेटअप होना है या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या एरिया डेवलप होना है तो उसके लिए भी कुल मिलाकर जो हमारी नीतियां हैं उस नीतियों में गाइडलाइन बनाए गए हैं जिस गाइडलाइन के तहत उन लोकल समस्याओं को या व्यक्तियों की उपस्थिति और इन सब चीज़ों को देखकर ही वहां पर इंडस्ट्रियल सेटअप भी हो सकता है। तो इस संबंध में भी कानून है और जहां पर लोकल और एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की समस्या को मीट करने का एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे आपने बोला कि क्या हम लोकल लोगों की नीतियों में हम ध्यान देते कि नहीं देते हैं, यस, जब पर्यावरण स्वीकृति की बात आती है जैसे कोई भी बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है या माइनिंग एक्टिविटी होने वाली है तो ऐसी एक्टिविटी के लिए पर्यावरण स्वीकृति एक कानूनी आवश्यकता है
0: जी।
1: उसके लिए उसे कानूनी तौर से पर्यावरण स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है उसमें पब्लिक हियरिंग की। पब्लिक हियरिंग का मतलब जब वो प्रोजेक्ट इस जगह पे आएगा तो आसपास के गांव के लोगों को सूचना देकर बुलाई जाती है और उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातें रखी जाती है, उनके सवालों का उत्तर देने जाने आवश्यक है ताकि उनके तरफ से कोई उनकी समस्या है, चाहे उनके रोजगार की समस्या होगी या उनकी खेती जमीन छीन जाने की समस्या होगी या पर्यावरण प्रदूषण से उनके जमीनों पर असर आने वाला है, तो उसमें उनकी सहभागिता है, वो अपनी बातों को रखते हैं और उनके बातों को रखने के बाद से जो भी माइनिंग के हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उसको संतुष्ट करते हैं। उसके संतोषजनक होने के बाद से भी उनको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है, मतलब लोकल लोगों की भी भूमिका आवश्यक होती है।
0: भूमिका की बात तो हो गई लेकिन कुछ नियम होते होंगे कानूनी दृष्टि से भी पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो आम व्यक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है, तो क्या कोई ऐसी खास जानकारी है जो हर आम नागरिक को होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण को लेकर?
1: सबसे पहले तो ये जो पर्यावरण का बोध होना, सोच होना, ये सब सारी चीज़ें हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहल्लों में हमको चर्चा का हमेशा विषय रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रही बात पर्यावरण के कानून की जानकारी, तो जो कानून क्या है, कानून एक सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक, अगर आपको कोई समस्या कहीं दिखाई दे रही है उसका समाधान भी है और हर समस्या का कानूनी समाधान भी है। किसी भी तरह का ऐसा, जैसे कोई जल को प्रदूषित कोई कर रहा है या वायु प्रदूषण कहीं हो रहा है, ऐसे कोई भी विषय अगर आपके पास आते हैं आज की तारीख में, बहुत सिंपल, आप आवेदन के तहत आप कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं, इसी के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी आप आवेदन भेज सकते हैं। कई बार तो आपके मात्र आवेदन से ही उस मामले को न्यायालय उसको सुमोटो लेकर और उस पर काफी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और कर रही है।
0: आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई है कि हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बोध होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सारी बातें बेमानी हैं जो हम कर रहे हैं। और क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जब सर से मेरी ऑफ द माइक बात हो रही थी वो ये भी थी कि हम हमेशा, हमें क्या करना चाहिए या दूसरों को क्या करना चाहिए, उससे बेहतर ये भी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या हो। स्वजिम्मेदारी लेना भी एक बहुत बड़ा वो है कि हम कई बार हम सिर्फ इसीलिए बच के निकल जाते हैं चीज़ों से कि कहीं उलझ ना जाएं। जैसे रोड पे भी कोई एक्सीडेंट होता है तो कितनी भी इस चीज़ को लेकर कितनी कार्यशालाएं होती हैं, कितने जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि आपको पहले उस आदमी को बचाना है।
1: एकदम सही बात,
0: आपका सबसे पहला कर्तव्य वो है।
1: और तो, इस संबंध में कानून भी अब यही बन गया है।
0: यही बन गया है, लेकिन हम अपनी उलझनों से बचने के लिए कई बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुका देते हैं, तो बेहतर होगा कि आप छोटी छोटी उलझनों में पड़िए और अपने आसपास की जो बड़ी दिक्कतें हैं उनको समझिए, ना कि बच के रास्ते निकालने की बात करिए।
1: एकदम सही।
0: पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप हमारे आम श्रोताओं को जो इस वक्त सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे?
1: आज के समय में सबसे आवश्यक है कि जिस तरह से हम कंज्यूमरिज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये चर्चा करना चाहिए कि जो RRR के फॉर्मूले हैं, मैं RRR उस सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं RR में ये बताना चाह रहा हूँ, रिड्यूस, चीजों का सदुपयोग करें, कम से कम उपयोग करें, रिसाइकल पे विचार करें। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल कर देते हैं और रिसाइकल कर उपयोग करते हैं। ये एक बेसिक चीजें हैं
0: जी।
1: और इसके साथ साथ जो और आवश्यक है कि हम ये चीजें हम अपने परिवार के साथ साथ अपने खुद में ये पहले बोध लेके आए, चीजों का दुरुपयोग ना करें, कम से कम चीजों का उपयोग करें। ये एक बेसिक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि सबको इस संबंध में बोध होना चाहिए।
0: और कहीं ना कहीं जैसा हर जगह हम सुनते ही हैं कि पेड़ पौधे लगाते रहिए तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही निजात मिल जाएगी।
1: एकदम
0: अगर
1: एकदम।
0: हमारे आसपास हरियाली रही तो हो सकता है कि हमको इतने कानूनी दाव पेच में भी उलझना सुलझना ना पड़े। लेकिन क्या कोई गाइडलाइन या कोई कानूनी भाषा में अगर हम कहें तो क्या कुछ आप बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो कहाँ सबसे पहले संपर्क करें अगर उन्हें कोई भी चीज़ दिखती है तो? कोई ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
1: ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर तो नहीं है पर्यावरण के संबंध में। जैसा मैंने पहले से भी मैंने बताया आपको कि इस संबंध में आप तुरंत लिखना सीखिए, शिकायत करना सीखिए। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ऐसा विषय है तो इसको लिखकर और आवेदन के माध्यम से आप संबंधित विभाग को आप पत्र लिखिए, एक बार लिखिए, संबंधित विभाग से ऊपर एस्केलेट कीजिए। आपके हर मामले में सुनवाई होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका एक लिखा हुआ वो जाया जाएगा, उस पर जरूर कार्रवाई होती है। बशर्ते कि आप अपना लिखना या काम करना बंद ना करें
0: जी,
1: स्वयं लिखे और भेजे
0: जी। पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे मुकदमे में आप हाजिर रहे हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जिसके कारण आपको लगा कि आप खुद बहुत संतोषजनक स्थिति में आए हों कि आपकी आवाज से कोई स्थितियां और बहुत बेहतर हुई हों, जो आप हमारे दोस्तों के साथ साझा करना चाहें?
1: देवास के पास कुछ पहाड़ियां हैं, एक प्रकरण आया ताकि माइनिंग बहुत तेजी से हो रही है, ये पहाड़ियां कट जाएंगी तो जंगल तो फिर से बनाए जाते हैं, पहाड़ी नहीं बनाए जा सकते, तो इस संबंध में एक प्रकरण चला। प्रकरण के बाद से अच्छी बात यह है कि उस पहाड़ी में देवास के लोग, आम जन, स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे और पास में कई इंडस्ट्रीज जो है, उस इंडस्ट्रीज के भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ तक कि बैंक्स और पुलिस विभाग के लोगों ने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया और धीरे धीरे धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा जंगल का रूप ले लिया
0: जी।
1: जंगल तो मैं बन चुका लेकिन जंगल की पहचान कागजों में है। कागज में मैं रेवेन्यू लिखा गया था क्योंकि वो रेवेन्यू की जमीन थी। अचानक ये मुझे पता चला कि चूंकि रेवेन्यू की जमीन है इसीलिए रेवेन्यू पर्पस के लिए किसी और को अलॉट कर दिया। वो लोग फिर हमारे पास आए 10 सालों के बाद से। जब 10 साल के बाद से आए थे तो फिर इस प्रकरण को लेके हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गए और ये बताने के लिए मैं जंगल हूँ, उस जंगल में हर तरह के पेड़ पौधे हैं, हर तरह की वनस्पति है, यहाँ तक कि वहाँ वल्चर्स का एक हैबिटेट बन चुका है, वहाँ हाल में चीते भी देखे गए, वहाँ तमाम तरह के जीव जंतु हैं और कुछ वाटर बॉडीज भी हो गए हैं जो कि जलीय जंतुओं के लिए, जंगली जानवरों के लिए, सबके लिए पीने का पानी का स्रोत बन गया है। पूरी तरह से एक मैंने पहाड़ी का रूप ले लिया है। लोग मुझे शंकरगढ़ की पहाड़ी के नाम से पुकारते हैं लेकिन मेरी पहचान कागजों में रेवेन्यू होने से आज उस मेरी जंगल की कटाई हो रही है। कोर्ट ने मेरी बात सुनी और उस जंगल को जंगल का रूप दे दिया।
0: ये सुनना ही इतना सेटिस्फैक्टरी था, ये जो आपने सफलता की कहानी सुनाई है, इसको सुनते हुए वही साहित्यिक दिमाग अलग तरह से सोचता है कि बाकी सारे केसेस तो ऐसे होते होंगे जहाँ खुद व्यक्ति कह सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, पर प्रकृति की आवाज़ ऐसी ही सशक्त आवाज़ें बनती हैं। जैसे मैं हमेशा इस बात को ज़रूर मेंशन करना पसंद करती हूँ कि रेडियो खुद होकर कोई पेड़ नहीं लगा सकता, लेकिन रेडियो पर आने वाली ऐसी सशक्त आवाज़ें हजारों लाखों पेड़ बचा जरूर सकती हैं।
1: जरूर।
0: आप स्टूडियो में आए, इतनी बेहतरीन बातें और आखिर में ये जो सक्सेस स्टोरी है, इसे सुनकर बहुत आनंद आया। दोस्तों, आप हैं ओम शंकर श्रीवास्तव जी, जिनका इतना कीमती समय हमने लेकर आज आपसे बातचीत की और प्रकृति के कानूनी दाव पेचों को जाना कि किस तरह हम पर्यावरण संरक्षण के कदम में एक कानूनी सहारा और सहायता भी ले सकते हैं। इसी के साथ प्रकृति की पुकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। सर, आपका एक बार पुनः शुक्रिया स्टूडियो आने।
1: आपका भी धन्यवाद और आभार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंतानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और आपके साथ मैं थी आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। श्रोताओं, आशा है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम को लेकर आपके कोई सुझाव या अगर आप अपने मन की कोई भी बात हमसे कहना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioazadhind@gmail.com। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल, देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, संवाद केवल दो आवाजों की एक दूसरे तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, ये तो दो जिज्ञासाओं के बीच खुलती हुई वो खिड़की है जहां से ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे भीतर उतरता है। योग वासिष्ठ हमें बताता है कि प्रश्न करना भी एक साधना है और उत्तर देना भी, क्योंकि प्रश्न की निर्मलता ही उत्तर की गहराई को जन्म देती है और वक्ता की दृष्टि ही शब्दों को ज्ञान का रूप देती है। आज हम जानेंगे कि एक सच्चा प्रश्नकर्ता कैसा हो जिसकी जिज्ञासा केवल उत्तर पाने की नहीं, सत्य को समझने के लिए उठे, और वो वक्ता कैसा हो जिसके शब्द केवल सुनाई न दें बल्कि श्रोता के भीतर विचार का दीप जला दें। तो आइए आज योग संवाद कार्यक्रम में प्रवेश करें उस संवाद की परंपरा में जहां प्रश्न विनम्रता से जन्म लेते हैं और उत्तर आत्मबोध की ओर ले जाता है। आज का विषय, वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण। हमारे बीच बातचीत के लिए उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योग संवाद के इस अंक में।
1: नमस्कार।
0: वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण हम जानेंगे जो योग वासिष्ठ में बताया गया है। मेरे मन में पहला प्रश्न तो यही है, जब इसके पन्ने में पलट रही थी तो राज विद्या और राज गुह्य ज्ञान की चर्चा हुई, तो आप बताएं कि ये क्या है।
1: देखिए, राज विद्या राज गुह्य ज्ञान इसे इसलिए कहा गया कि सर्वप्रथम जो यह अध्यात्म विद्या है यह राजसभा में उपदिष्ट हुई, तदनंतर इसका प्रसार लोक में हुआ, इसी कारण इसे राज विद्या कहा गया। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, राज विद्या एवं राज गुह्य नाम से जिसकी प्रसिद्धि है उस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को पाकर राजा लोग दुख से रहित हो परमानंद को प्राप्त हो गए। देखिए, सतयुग के समाप्ति से पूर्व भारत में जो पवित्र कर्मकांड तथा ज्ञान कांड का उपदेश होता था वो अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत रहने वाले लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए होता था। अब यहाँ पर अभी वर्तमान में जब कलयुग आ गया तो इसमें इसके क्रम बदल गए। अब कर्मकांड पवित्रता का विषय नहीं रहा
0: जी।
1: अब कर्मकांड में देखें तो जो कर्मकांड कराने वाले विशेषज्ञ हैं उनकी भी अपनी कामनाएं हैं, और जो लोग कर्मकांड करा रहे हैं उनकी भी अपनी कामनाएं हैं। और पवित्रता इसलिए नहीं है कि जैसे कहा गया कि चित्त की अशुद्धि का मूल कारण है अज्ञान, तो देखें तो कर्मकांड की जो पूरी साधना है वो एक प्रकार से अज्ञान से प्रेरित है, वो मोक्ष के लिए नहीं है
0: जी।
1: जबकि उस समय सतयुग में कर्मकांड भी मोक्ष के लिए था, संसार में किस तरीके से आप अपनी अज्ञानता को दूर कर सकें, अंतःकरण के दूषण को समाप्त कर सकें, अंतःकरण को निर्मल कर सकें। क्योंकि आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर कहा, निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
0: बड़ी रोचक सी बात है कि कोई भी कर्मकांड मन को निर्मल करने के लिए नहीं है।
1: नहीं है आज के समय में,
0: आज के समय में,
1: उस समय था सतयुग में। तो सतयुग के समाप्ति के बाद ऐसा मतलब उसका क्षरण हुआ, तो फिर उस समय ये जो उपदेश था ये राजाओं तक सीमित रखा गया। कई बार ये आजकल के समाज में मुझे सामना करना पड़ता है ऐसे प्रश्नों का कि इसका मतलब इसे गोपनीय रखा गया। गोपनीय नहीं रखा गया। ये देखिए क्या है, कोई भी साधन अगर पवित्र हृदय या पवित्र ज्ञान के साथ रहने वाले लोगों के पास है तो वो साधन आपके भय को निर्मूल करने का कारण बन सकता है। लेकिन वही अपवित्र कामना के साथ किसी के हाथ में वो साधन आ जाए तो वो व्यक्ति वो खुद भी अपवित्र है, साथ ही साथ उसका उपयोग भी वो चित्त शुद्धि के लिए नहीं करेगा। इसलिए आप देखिए कि हम कई बार कहते भी हैं कि हथियार अगर रक्षाकर्मी के हाथ में हो तो आप निर्भय होकर घूमते हैं, लेकिन वही हथियार अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ जाए जिसका कर्तव्य रक्षा करना ना हो तो उससे आपको डर लगेगा। मतलब उसी पात्र से या उसी साधन से आप डरोगे। कारण क्या हुआ इसमें, क्योंकि वो जो शस्त्र है वो ऐसे व्यक्ति के हाथ आ गया है जो शास्त्र की मर्यादा को नहीं जानता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, क्योंकि राम जैसी मर्यादा जिसके पास है शस्त्र की शोभा उन्हीं हाथों में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: रावण के पास भी शस्त्र है लेकिन वो शस्त्र लोगों के भय का कारण है।
0: जी जी जी जी जी। अच्छा, वशिष्ठ जी श्री राम को उपमा देकर बात करते हैं, क्या वो उपमा है और क्यों ऐसी उपमा उन्होंने दी है उन्हें?
1: आपने बड़ा मतलब रिलेवेंट प्रश्न पूछा। वशिष्ठ जी राम को कहते हैं हे शत्रु मर्दन, माने शत्रुओं का मर्दन करने वाले राम, तुम्हारा मन अत्यंत निर्मल है, इसलिए किसी निमित्त के बिना स्वाभाविक ही तुम्हारे मन में यह परम पावन और उत्तम वैराग्य जाग उठा है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। आप देखिए कई बार मन की मलिनता से लोग वैराग्य की तरफ उन्मुख होते हैं।
0: जी जी,
1: संसार की सिद्धि नहीं हुई इसलिए वैरागी हो गए, या संसार में दुख दिखाई दिया इसलिए वैरागी हो गए। इसका मतलब का देखिए, ये वैराग्य जो है सब नैमित्तिक वैराग्य है ये। जैसे अगर आपको संसार में दुख न दिखता, संसार में सुख ही सुख दिखाई देता, तो क्या कोई वैरागी होता?
0: नहीं
1: होता। तो ऐसा व्यक्ति जो संसार में दुख देख रहा है, तो उसके संसार से विराग का कारण क्या है? दुख
0: है।
1: अगर दुख न दिखता तो विरागी नहीं होता। जबकि राम जी ऐसे नहीं है, ये निर्मल मन का द्योतक नहीं है। कल्पना करिए, मैं तो कई बार देखता हूं कि संसार से वैराग्य लेने वाले लोग अपनी साधनाओं में राग कर बैठते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कह सकते हैं कि आप जगत से दूर जा रहे हैं, जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में एक संसार बना लिया आपने, अपनी साधना का संसार, और वो संसार आपको राग से ग्रसित कर लिया, तो वैराग्य की सिद्धि कहाँ हुई? भाई यहाँ का आदमी संसार के पीछे भाग रहा है और वहां संसार से आप भागने में लगे हैं, यानी आपका संसार संसार से भागना हो गया
0: जी।
1: तो ये गलत है कि नहीं? एक बहुत सुंदर गीत किसी ने लिखा था कि अपमान रचयिता क्या होगा रचना को अगर ठुकराओगे तो
0: जी जी जी,
1: है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, संसार में आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। वैराग्य ज्ञान का विषय है। अज्ञान से वैराग्य जो उत्पन्न होता है वो नैमित्तिक वैराग्य है। उसको राजस वैराग्य भी कह सकते हैं आप।
0: अच्छा, कि उस तो वैराग्य के प्रकार भी हैं।
1: वैराग्य के प्रकार भी हैं।
0: जी जी,
1: बिल्कुल।
0: तो आपने राजस वैराग्य की चर्चा कर दी है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा विस्तार दें इसे।
1: राजस वैराग्य का मतलब हुआ कि जो वैराग्य किसी निमित्त से उत्पन्न हुआ हो, या उस निमित्त के कारण उत्पन्न होने वाले वैराग्य का मूल विषय उस निमित्त को मिटाना होगा। जैसे किसी को संसार में दुख का दर्शन हुआ, तो दुख के दर्शन के नाते उन्होंने संसार का त्याग किया, तो उनका निमित्त क्या बना? दुख। तो ऐसे में ये जो वैराग्य है ये राजस वैराग्य है। ये दुख के निर्मूलन के बाद ये वैराग्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका कारण ही मूल ही दुख है। और जहां भी उन्हें कहीं सुख की अनुभूति होगी तो सुख में वो राग कर बैठेंगे, चाहे वो सुख किसी भी प्रकार का हो। तो एक प्रकार से देखें तो राजस वैराग्य हमेशा नैमित्तिक होता है। तो इसलिए जब भी हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो तो हमें अपने चित्त का एक बार स्वाध्याय करना चाहिए कि हमारे वैराग्य का कारण क्या है। अगर रिश्तों की विफलता है, अगर संसार में देखा जाने वाला दुख है, अगर संसार में असंतुष्ट लोगों को देखने के बाद हमारे चित्त में वैराग्य की उत्पत्ति हो रही है, तो निश्चित ही अगर ये दृश्य न होते तो क्या हमारे चित्त में वैराग्य उत्पन्न होता? शायद नहीं होता। वैराग्य की उत्पत्ति अगर ज्ञान से हो रही है
0: जी,
1: ज्ञान जबकि निमित्त नहीं है। अब यहां पर भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि यहां तो ज्ञान निमित्त हो गया। ज्ञान निमित्त नहीं है, ज्ञान से वैराग्य होता ही है। वैराग्य उत्पन्न होने का मूल कारण है सत्य का ज्ञान। अगर सत्य आपके सामने उद्घाटित हो रहा है तो ऐसा ज्ञान सात्विक वैराग्य कहलाएगा, क्योंकि सात्विकता से सत्य प्रकट होता है। इसलिए सत्वगुण जो है वो प्रकाश का द्योतक है, कि उसके प्रकाश में आप अच्छा बुरा सब देख सकते हैं। कबीर साहब अपने दोहों में अक्सर हंस शब्द का प्रयोग करते हैं। हंस एक ऐसा पक्षी है, ऐसी मान्यता है कि वो दूध और पानी अगर मिला दिया जाए तो पानी छोड़ देगा, दूध को ग्रहण कर लेगा, ऐसी एक मान्यता है। इस नाते हंस विशेष माना जाता है पक्षियों में। तो इसका मतलब हुआ कि सार को ग्रहण करने वाला, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, ये है वैराग्य। कि जो त्यागने योग्य है या जिसका संग नहीं हो सकता है उस संग का त्याग कर दें और सत का संग कर लें, तब वैराग्य हुआ। वैराग्य सत्संग करने का एक प्रबल माध्यम है।
0: तो आपने राजस वैराग्य और सात्विक वैराग्य दोनों को ही समझाया। तो सात्विक वैराग्य से हम ये समझें कि वो वैराग्य जो ज्ञान के साथ हमारे भीतर बना रहता है,
1: ज्ञान के साथ उत्पन्न होता। देखिए ज्ञान के साथ सत्य प्रकट होगा। भारत में ज्ञान विषय के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया। भारतीय ज्ञान परंपरा में जब भी ज्ञान शब्द आया है वो आया है आत्मा के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में, ब्रह्म ज्ञान। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म विद्या। भगवान ने भी गीता में कहा कि मैं विद्या में अध्यात्म विद्या हूं। तो अध्यात्म विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या ये है कि जिस विद्या का आधार आपकी आत्मा हो, आपका ब्रह्म तत्व हो। चेतन का ज्ञान, उस ज्ञान से चित्त निर्मल होगा, अमल होगा, और सतत सुख जो सुख की राशि है, ऐसा सुख जो दुख पर आधारित नहीं है, यानी संसार में जिस सुख दुख का हम अनुभव करते हैं ये परस्पर आश्रित हैं, एक दूसरे के अनुपूरक हैं, क्योंकि संसार में जब भी आप कोई सुख का अनुभव करते हैं तो वो दुख से संदर्भित होता है, दुख पर आधारित होता है। ये कहते हैं कि सुख की राशि वो जो है वो तभी आप सुख की राशि तक जुड़ सकते हैं जिसको सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वयम नुमः, यानी कि जहां तीनों तापों का विनाश हो ऐसा ज्ञान जो है सहज सुख की राशि होगा, और उसी को सच्चिदानंद रूप कहा गया। सत्चित आनंद है वो स्वरूप, यानी स्वरूप का ज्ञान ज्ञान है भारत में। बाकी विषयों के ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जब भी ज्ञान शब्द आएगा तो वो आएगा ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, चित्त की शुद्ध करने वाले ज्ञान के लिए, चित्त को निर्मल करने वाले ज्ञान के लिए।
0: अच्छा, आप ये बताएं कि ये ग्रंथ क्या कहता है कि परब्रह्म को कौन प्राप्त होता है?
1: परब्रह्म को वह प्राप्त होता है जिसकी सांसारिक बुद्धि नष्ट हो चुकी हो, जिसने सांसारिक बुद्धि को त्याग दिया हो। सांसारिक बुद्धि के त्याग के बिना परब्रह्म की अनुभूति नहीं हो सकती। यहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं कि जो राजस वैराग्य है वो संसार में किसी न किसी निमित्त से उत्पन्न होता है, परंतु राम तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ वैराग्य अपूर्व है। अपूर्व का मतलब इसके पहले किसी को ऐसा वैराग्य नहीं हुआ। आप देखिए, शब्दों पर हम अगर ध्यान देंगे तभी वो शब्द अपने अर्थ के साथ अपनी आत्मा को प्रकट कर पाएंगे। अपूर्व शब्द का हम प्रयोग करते हैं, अपूर्व का मतलब पहले किसी को नहीं हुआ। तो राम का वैराग्य ऐसा वैराग्य है जो अपूर्व है। यह किसी निमित्त की अपेक्षा न रखकर स्वयं अपने विवेक से उत्पन्न हुआ है और सत्पुरुषों को आश्चर्य में डालने वाला है, अतः सात्विक है। ऐसा वैराग्य जो सत्पुरुषों के भी आश्चर्य का कारण बन जाए, ऐसा अपूर्व वैराग्य राम जी को हुआ है जिसका कोई निमित्त नहीं है। वो कहते कि संसार के दुख को देखा, ऐसा नहीं है कि दुख को देखा। ऐसे तो कहने में बात जब आती है तो उसका एक पक्ष या एक दृष्टिकोण सामने आ पाता है, लेकिन अगर हम उसको समग्रता से देखें तो राम जी को जो वैराग्य हुआ वो वैराग्य सात्विक वैराग्य है जो किसी निमित्त से उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसका कारण विवेक है। विवेक से उत्पन्न होने वाला वैराग्य आत्म ज्ञान की तरफ व्यक्ति को ले जाता है, प्रकाशित करता है।
0: अच्छा, आप ये बताएं कि दुख को सहन करने का सामर्थ्य कैसे आता है?
1: आपने सुंदर सवाल किया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राघव, श्रेष्ठ पुरुषों में शीत उष्ण वात आदि द्वंद जनित दुखों को सहन करने की क्षमता ज्ञान के बल पर ही आती है, अन्यथा ज्ञान युक्ति के अतिरिक्त वे किसी प्रकार इसको सहन नहीं कर सकते। दुख की चिंताएं अज्ञानी मनुष्यों को पद पद पर आके घेर लेती हैं और समय अनुसार उन्हें संतप्त करती हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इसको ज्ञान के बल पर नष्ट करते हैं। ऐसा नहीं विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में नहीं आती हैं। जब देह में व्यक्ति होगा तो देह विषमता को अनुभव करेगा।
0: जी जी।
1: आपके अनुरूप भी विषय हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं। लेकिन ज्ञान के बल पर इसको सहन करने का जो सामर्थ्य है वो ज्ञान के बल पर आता है। इसलिए दुख कभी भी अगर आप चाहते हैं नष्ट करना या चाहते हैं कि दुखों को हम निर्मूल करें तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान में अध्यात्म ज्ञान जो चित्त के रोग को मिटाता है, और चित्त के रोग का कारण है अज्ञान, और चित्त का रोग ज्ञान से ही मिटता है। अंतःकरण के रोग को ज्ञान से दूर किया जा सकता है। तो ज्ञान बल से जो सात्विक पुरुष हैं वो अपने को विवेक से उत्पन्न वैराग्य की साधना करते हैं और संसार के दुखों से अपने को मुक्त रखते हैं, यद्यपि परिस्थितियां उनके जीवन में भी अनुकूल प्रतिकूल होती रहती हैं।
0: जी। अच्छा, आप ये बताएं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु किससे प्रश्न करना चाहिए?
1: बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन लोगों के पास जाए जो श्रुति आदि प्रमाण देने में कुशल तथा आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञाता हो। ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर प्रयत्न पूर्वक विनय भाव से प्रश्न करे, यानी वक्ता में ये गुण होना चाहिए कि वो श्रुति परंपरा का व्यक्ति हो। श्रुति परंपरा और स्मृति परंपरा ये दोनों अलग अलग है। श्रुति परंपरा में ऋषि होते हैं, इसीलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया, यानी ऋषि का मतलब देखने वाला, जिसने उसको देखा है, जिसको कबीर साहब ने लोक भाषा में कहा कि तुमने जो कही किताबन लिखी, हमने जो कही वो आंखन देखी। तो जिसने देखा है वो उस श्रुति परंपरा का संवाहक हो सकता है, क्योंकि वो जानता है। और गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा कि तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानत तत्वदर्शिन, कि जो तत्वदर्शी है यानी जो देखने वाला है उसके पास तुम जाओ और जा करके उससे प्रश्न करो। ऐसे लोगों से मत प्रश्न करो जो कहीं सुनी बातों को सुन करके बता रहे हैं। इसलिए आप जब उपनिषद का अध्ययन करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा, उसमें ऋषि साफ साफ कहते हैं कि जो ये ज्ञान है ये प्रवचन से प्राप्त नहीं होता, यह शास्त्र से प्राप्त नहीं होता, ये मेधा से प्राप्त नहीं होता, ये तब प्राप्त होता है और उन लोगों को प्राप्त होता है जो इसको ग्रहण करने की पात्रता रखते हैं, उनमें ये उतरता है। ये कहते हैं ना कि ये आत्मा का जो प्रकाश है वो सब में है, लेकिन प्रकट वहां होती है जहां पर उतरने का सामर्थ्य आया, यानी आपको अपने को योग्य बनाना है। ज्ञान तो आप में है ही। किसी संत ने इसको कहा है कि बलिहारी उस घाट की जामे प्रगट होए, घट घट व्यापे साइयां सूनी सेज न कोए, और बलिहारी उस घाट की जामे प्रगट होए, यानी परमात्मा तो हर घट में व्याप्त है, लेकिन वो धन्यवाद है उस घट का जिसमें उसका प्राकट्य हो गया, क्योंकि वो प्राकट्य करने के लिए विवेक ज्ञान से संपन्न हो गया, उसका जो वैराग्य था वो निमित्तिक नहीं रहा, वो बिना निमित्त के वैराग्य उत्पन्न हुआ, इसलिए उस सत्य को प्रकट करने का उसने सारी बाधाएं अपने जीवन से हटा दी, चित्त निर्मल हुआ और फिर स्वयं का प्रकाश प्रकाशित हो गया।
0: जी। अच्छा, प्रश्नकर्ता कैसा होना चाहिए, क्या इसके लक्षण बताए जा सकते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी सोचिए ना कि जिस ज्ञान के प्रकाश ने उस गुरु को प्रकाशित नहीं किया जिससे आप प्रकाशित होने की कामना करके उसके पास गए हैं, तो जब वो गुरु विषम बुद्धि के साथ खड़ा है, उसकी बुद्धि समत्व में स्थित नहीं है, वो योगी नहीं है, तो फिर ऐसे में उसके द्वारा दिया गया ज्ञान आपके चित्त की विषमता को दूर कैसे करेगा? ये विचारणीय विषय है। तो प्रश्नकर्ता में तो इतनी समझ होनी चाहिए या वक्ता में इतनी समझ होनी चाहिए कि जिस ज्ञान से हम अपने जीवन को प्रकाशित नहीं कर पाए, उस ज्ञान के द्वारा हम अपने अनुयायी या हमसे जो प्रश्न लेकर के हमारे पास जिज्ञासु आए हैं उनके अज्ञानता को दूर कैसे कर देंगे? तो यहां पर ये बात उन्होंने कहा कि अतएव प्रश्न करने वाला जो है वो उस प्रमाण कुशल और तत्वज्ञानी वक्ता के उपदेश का जो पुरुष यत्न पूर्वक अनुसरण नहीं करता, उससे बढ़कर दूसरा कोई नराधम नहीं है। यानी अगर कोई तत्वज्ञानी जिससे आपने प्रश्न पूछा और उसने जो उत्तर दिया उसका जो अनुपालन नहीं कर रहा है, उसको इन्होंने कहा कि वो नराधम है। अतः वक्ता के व्यवहार आदि कार्यों से उसकी अज्ञता और तत्वज्ञाता का पहले निर्णय करके जो पुरुष उससे प्रश्न करता है, वह प्रश्नकर्ता उत्कृष्ट बुद्धि वाला माना जाता है। परंतु जो जिज्ञासु उत्तम वक्ता का निर्णय किए बिना ही उससे प्रश्न करता है, वह अधम कहलाता है और उसे तत्वज्ञान रूप महान अर्थ की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि पूर्वापर का विचार करके उस जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर दे।
0: तो ये तो प्रश्नकर्ता की बात हुई, अब हम वक्ता की भी बात करते हैं कि जो वक्ता है वो प्रश्न का उत्तर देते समय किन बातों पर विचार करे, क्या कहा गया है?
1: वक्ता को इस बात का पहले विचार करना चाहिए कि जो आपका प्रश्नकर्ता है क्या उसे पूर्वापर का ज्ञान है। पूर्वापर मतलब पूर्व के पक्ष का। जैसे आप देखिए, आप कहीं भी जहां हैं वहीं से तो चलना प्रारंभ करेंगे, तो जब तक प्रश्नकर्ता की स्थिति आपको पता न हो और बिना उसकी स्थिति जाने आप उसको वहां का ज्ञान देना शुरू कर दिए जहां वो है ही नहीं, तो निश्चित ही उसके लिए चलना दूभर हो जाएगा। तो पूर्वापर का जिसे ज्ञान हो ऐसा विवेचन वक्ता को करना चाहिए, उसका निश्चय करने में जिसकी बुद्धि समर्थ हो और जो निंदनीय न हो, मतलब ऐसा वो प्रश्नकर्ता न हो कि वो निंदनीय दृष्टि का हो या वो पूर्वापर को जानता भी नहीं हो या ज्ञान को ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं रखता हो, ऐसे पुरुष को उसके पूछे हुए तत्व का उपदेश दे। परंतु जो आहार निद्रा भय मैथुन आदि पशुधर्म से संयुक्त हो, ऐसे अधम को तत्व का उपदेश न दे। यानी तत्व का उपदेश देने के लिए सबको उन्होंने अलाउ नहीं किया, इसीलिए इसको राज विद्या और राजगुह्य कहा गया, क्योंकि राजा लोग इसके पात्र थे। इसका उद्देश्य नहीं था कि राजाओं को जानबूझ करके किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको ये ज्ञान दिया गया, वो पात्र हो गए थे, इसलिए उनको उनके अंदर विवेक जागृत था। तो विवेकवान को ही तत्व ज्ञान का उपदेश देना चाहिए,
0: पात्रता देख कर ही
1: जी, क्योंकि प्रश्नकर्ता की श्रुति आदि प्रमाणों द्वारा निर्णित पदार्थों के ग्रहण करने की योग्यता विचार किए बिना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है, मतलब अगर आपने प्रश्नकर्ता का विचार नहीं किया और उसको तत्व ज्ञान का उपदेश देना शुरू कर दिया, ऐसा वक्ता कहा गया कि वो वक्ता श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए आप देखिए, अपने सामाजिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए भी जब हम व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो चुनाव में हम उस व्यक्ति की पात्रता देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति इस पद के अनुसार कार्य करने योग्य है कि नहीं, या ये शक्ति इसे दी जाए कि नहीं दी जाए। ये अलग बात है कि वहां पहुंच जाने के बाद लोग जिन संकल्पों के साथ उस पद तक पहुंचना चाहते हैं वो संकल्प भूल जाते हैं।
0: बिल्कुल, है ना। मुझे भी यही एक प्रसंग याद आ गया पात्रता की, चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो थे
1: जी,
0: वो संगीत सिखाया करते थे और उनकी जो पुत्री थी अन्नपूर्णा देवी, बहुत छोटी थी
1: जी,
0: और अचानक उन्होंने उनका गाना सुन लिया था और कहा था कि इसे मैं संगीत दूंगा। तो उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि उनके घर में उस समय तक लड़कियां संगीत नहीं सीख रही थी
1: जी।
0: एक बेटी ने सीखा था जिसका हश्र अच्छा नहीं हुआ था, तो उन्होंने अन्नपूर्णा देवी को संगीत नहीं सिखाने का निर्णय लिया था। लेकिन जब गाना सुन लिया तो उन्होंने ये बात कही कि कुपात्र को संगीत सिखाना पाप है और सुपात्र को संगीत न सिखाना पाप है
1: जी। बिल्कुल,
0: तो ये मतलब पात्रता वहां भी
1: जी
0: थी, तो वैसी बात ही हो गई।
1: वैसी ही बात है
0: जी।
1: आप देखिए ये सब जो बातें हैं ना, ये इतनी अर्वाचीन, मतलब मैं इसकी इतनी जरूरत है, इसकी प्राचीनता के साथ साथ इसकी महत्ता आज के समय में और अधिक है। वशिष्ठ जी कहते हैं राम से, रघुनंदन तुम प्रशंसनीय गुणों से युक्त अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता हो और मैं उपदेश देना जानता हूँ। देखिए उन्होंने कहा कि मुझे भी मालूम है, तुम्हारे प्रश्नकर्ता की हैसियत मुझे पता है, मैं उपदेश देना जानता हूँ, अतः हम दोनों का यह समागम उचित है
0: जी।
1: अब आप देखिए योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी के शिष्य राम के अन्य भाई लोग भी हैं
0: जी,
1: लेकिन ये योग वासिष्ठ ग्रंथ की चर्चा सिर्फ राम से हुई है,
0: राम से हुई है जी,
1: क्योंकि बाकी लोगों में ऐसे प्रश्न की उत्कंठा नहीं है, ऐसी जिज्ञासा नहीं है जो जिज्ञासा राम में है
0: जी, जी, जी। अच्छा ये बताएं कि इसी ग्रंथ में मोक्ष प्राप्ति में सहायक द्वारपालों की चर्चा हुई, बड़ी रोचक है वो
1: जी, जी।
0: तो कौन कौन से वो द्वारपाल हैं, क्या बताया गया है हमारे सुनने वालों को आप बताएं
1: जी। उस मोक्ष के द्वार पर निवास करने वाले चार द्वारपाल बतलाए गए हैं, जिनके नाम हैं शम, विचार, संतोष और साधु संगम। ये चार द्वारपाल हैं मोक्ष दिलाने में जो सहयोगी हैं। और राम को वो कहते हैं तुम शब्दार्थ के ज्ञाता हो, इस नाते तुम्हारे जो प्रश्न हैं वो श्रेष्ठ हैं और तुम इस उपदेश को सुनने की पात्रता रखते हो
0: जी।
1: तो जो ये चार द्वारपाल बताए गए हैं उसको कहते हैं वशिष्ठ जी, मनुष्य को इन चारों का ही प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनका भली भांति सेवन होने पर यह मोक्ष रूपी राजमहल के द्वार खोल देते हैं
0: जी।
1: यहाँ पर मोक्ष को राजमहल कहा गया है, यानी राजमहल का मतलब जहां उससे बड़ा कोई महल नहीं हो सकता, या उस महल में जाने के बाद किसी और महल की कामना नहीं हो सकती, यह है मोक्ष, यानी कामनाओं से मुक्त हो जाना मोक्ष का नाम है। तो कहते हैं कि भली भांति सेवन करना चाहिए, यदि इन चारों का सेवन न हो सके तो तीन का या दो का सेवन तो अवश्य करना चाहिए, दो का भी सेवन न हो सके तो सभी उपायों द्वारा प्राणियों को बाजी लगाकर किसी एक का आश्रय तो अवश्य ग्रहण करना चाहिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि जब एक वश में आ जाता है तब तीनों भी उसके अधीन हो जाते
0: हैं।
1: कितनी सरलता उन्होंने कह दी, किसी एक का अगर चार नहीं कर सकते तो किसी एक को भी साधो, इसी को कहा गया एक ही साधे सब साधे सब साधे सब जाए।
0: अच्छा, मेरे मन में ये था कि जो चार द्वारपाल उन्होंने बताए, इन चारों को अलग अलग से भी आप समझा दें हमारे सुनने वालों के लिए कि जो उन्होंने सम कहा या विचार कहा।
1: सम का मतलब होता है जो अपन शरीर के लेवल पर जो अनुशासन का पालन करते हैं उसको सम कह सकते हैं।
0: सम,
1: ठीक है। सम के बाद दम आता है, यानी जो मन के लेवल पर जो अनुशासन को पालन किया जाए, यहाँ पर वहां पर उन्होंने दम न कह के उसको विचार कहा कि देखा जाए तो जब तक शरीर की इंद्रियों पर आपका अनुशासन नहीं होगा तब तक आप सद्विचार करने का सामर्थ्य नहीं रखेंगे, क्योंकि इंद्रियां लंपट हैं स्वभाव से, इंद्रियां हमेशा विषयों की तरफ भागेंगी। और कोई व्यक्ति ये कितना भी दावा करे कि हम सदचिंतन करते हैं, सदचिंतन आप तभी कर सकते हैं जब आपको सदव्यवहार करना आता हो, है ना। आपको सदव्यवहार का मतलब अनुशासित व्यवहार करना आता हो, ठीक है। हाँ। और अनुशासित व्यवहार बिना विचार के नहीं होगा, सद्विचार और सद्व्यवहार, तो ये दो बात हो गई, यानी सम और विचार। सम और विचार के बाद जो आता है संतोष आता है। अगर विचारों पर आपने संयम प्राप्त कर लिया, विचारों को अनुशासित कर लिया, विचार अब आपको नहीं बल्कि विचारों को आप नियंत्रित करते हैं, तो ऐसे में आपके अंदर संतोष अपने आप प्राप्त हो जाएगा।
0: जी जी।
1: और जैसे ही संतोष आपको आता है तब आप साधुओं का संग करने के योग्य हो जाएंगे, जो साधु संगम कहा उन्होंने, कि साधुओं के पास जाकर के भी लोग साधु संगम नहीं करते, वहां पर भी संसार का संगम करते हैं, संसार की कामना लेकर के जाते हैं कि महाराज जी के आशीर्वाद से हमारी ये कामना सिद्धि हो जाएगी, जबकि साधु संगम करने का सामर्थ्य उसी में आता है जिसको शम विचार संतोष इन तीन साधनों की सिद्धि जिसने की हो। हालांकि वशिष्ठ जी ने कहा किसी एक को भी अगर साध हैं आप तो ये चारों ये तीनों बाकी सद जाते हैं।
0: जी जी,
1: एक को साध लेने से भी, क्योंकि साधु के पास जाकर के आप संसार लेके जाएंगे, लेकिन अगर वास्तव में वो साधु है तो वो संसार की नश्वरता का ज्ञान आपको कराएगा। बार बार वही कहेगा कि संसार किसको सुख दिया है, जाके ढूंढ के लाओ। मुझे याद आता है महात्मा बुद्ध जी जिन दिनों में प्रवास पर होते थे, भ्रमण करते थे, तो वहां पर एक रानी थी जिनको बहुत तपस्या के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। कुछ साल के बाद वो पुत्र नहीं रहता है। अब पुत्र के मर जाने के बाद वो इतनी बेहवल हो गई कि सारा सुधबुद्ध खो बैठी और पुत्र के शव को अपने सीने से चिपका कर रोती रही। अब राजा परेशान कि कैसे इनको मुक्त कराया जाए, तो उसी समय उनके राज्य में बुद्ध जी का विहार होना था, तो कहा कि बुद्ध आए हैं, बुद्ध के उपदेशों का इनके ऊपर असर होगा। तो वो आह्लादित होकर बुद्ध के पास पहुंची और बुद्ध से उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध बड़े अद्भुत संत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चित्त का वैद्य, उन्होंने कहा कि मैं तो चित्त का वैद्य हूँ, यानी चित्त के रोगों का शमन करता हूँ, और इनका चित्त रोगग्रस्त हो गया है इसलिए इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा बताइए, मैं तो रानी हूँ, इस राज्य में तो मेरा ही चलता है, मतलब मेरी बात को कौन नहीं मानेगा। कहते मुझे एक मुट्ठी जो है पीला सरसों चाहिए। तो बहुत खुश हो गए कि एक मुट्ठी पीला सरसों
0: और बेटा
1: जीवित हो जाए। तो वो तो फिर इतने भाव में आई, उनको बेटा का जीवन दिखने लगा, वो पूरे राज्य में खुद ही दौड़ने लगी हर घर में कि मुझे एक मुट्ठी पीला सरसों दे दो। और जब पूरा राज्य उनको देने को तैयार था तो फिर वो पूछती थी तुम्हारे यहाँ कोई मृत्यु तो नहीं हुई है। वो राजा एक शर्त थी,
0: ये बुद्ध की वो थी शर्त,
1: बुद्ध की शर्त थी कि सरसों वहीं का होना चाहिए जिसके घर में कोई मृत्यु नहीं हो। तो वो जहां भी जाती थी वहां मृत्यु की श्रृंखला तो है, जहां जन्म हुआ है वहां मृत्यु तो होगी।
0: ये चित्त का उपचार
1: उपचार था। तो फिर वो अंत में शाम तक उनका चित्त शांत हो जाता है और फिर वो बेटे के जो सौदाह में सहभागी बनती हैं, तो उनका चित्त शांत हो गया कि भाई मृत्यु तो होनी ही है। तो इस तरीके से आप देखें तो साधु संगम का असर होता है, प्रभाव होता है कि संसार के द्वारा मलिन चित्त भी निर्मल हो जाता है।
0: तो शशिकांत जी, बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज की। योग वासिष्ठ में जो बताया गया है वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षण, उस पर विस्तार से आपने चर्चा की। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका हम हृदय से आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम में आज हमने बात की वक्ता और प्रश्नकर्ता के लक्षणों पर। उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ थी मैं सुनीता सिंह। अब इस कार्यक्रम से अनुमति दें। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल, देश के लिए,

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम, हमारा विशेष कार्यक्रम एकै राम रहीम भजन संध्या।

0: ये प्रस्तुति हुई 2 अक्टूबर की शाम एके राम रहीम भजन संध्या में।
1: जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री सुनील लोधी जी का। प्रस्तुति आरंभ हो उसके पहले हम मंच पर उपस्थित कलाकारों से आपका परिचय करवा दें। श्री सुनील लोधी तो उपस्थित हैं ही मंच पर, आपके साथ सहगायन कर रहे हैं श्री गोलू कुशवाहा और श्री गोविंद तिवारी। कीबोर्ड पर हैं श्री आदित्य गोस्वामी, ऑक्टोपैड पर श्री अंकित ठाकुर, गिटार पर श्री शिवांशु, ढोलक पर श्री संजय पुरी, तबले पर श्री ध्रुव राजपूत और बांसुरी पर श्री हर्ष। तो देवी और सज्जनों, माँ सरस्वती का आशीर्वाद और भगवान श्री हनुमान का भरोसा लिए आपके बीच उपस्थित हैं श्री सुनील लोधी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सुनील जी से हम आग्रह करते हैं कि वो प्रस्तुति आरंभ करें।

आदरणीय हमारे एवं समस्त भोपालियों वासियों का मैं कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ये जो कार्यक्रम रखा गया है उनको नाम से पाए और प्रभु का गुणगान करें। मेरे भोपाल वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे भाई बहन, हमारे मैं क्या बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। सभी को मेरा कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद।

और हमारे भोपाल वासियों को कैसा भजन लगा है तालियों के साथ बता सकते हैं। मैंने न जाने कितने भजन और कितने गाने गाए, बट हमारे दर्शकों ने इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है कि आज मैं बॉलीवुड में एक थोड़ा सा हनुमान अंश का एक हिस्सा बना सका अपने भजन का। बोलिए जय जय श्री राम।

0: सभी को जय जय श्री राम।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी और उनके साथियों का भक्ति गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे एक ही राम रहीम, सुनील लोधी से भजन संध्या हमारे विशेष कार्यक्रम में। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आप सुनते हैं रेडियो रिपोर्ट।
2: नमस्कार, 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त रेडियो रिपोर्ट का है। आपके साथ मैं हूं फराज। रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में, जहां रविवार की शाम नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित श्रृंखला संभावना के तहत गायन और नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में।
3: और अब ये मंच हम सौंप रहे हैं शिवांश और उनके साथी कलाकारों को।
4: प्रणाम सभी को, सभी गुरुजनों और श्री वृंदावन धाम की चरण रज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस संध्या वेला में प्रभु नाम भजन का आप सब आनंद ले रहे हैं। सर्वप्रथम श्री गणेश जी को ध्यान करते हुए श्री गणेश वंदना प्रस्तुत कर रहे हैं।

0: माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
1: दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4।

चलिए अब एक ऐसा भजन जो आप सबके दिलों में बसता है, आप सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम सभी सुनते आ रहे हैं, श्री रविंद्र जी जैन जी का कंपोज किया

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आजाद हिंद में। ये वो कार्यक्रम है जिसमें आप सुनते हैं उन महान देशभक्तों की प्रेरणादायी कथाएं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा समय को बदल कर रख दिया और उनका जीवन आज भी प्रेरणा स्रोत है।
2: श्रोताओं, हमारे देश में सामाजिक विषमताओं से लड़ने और एक स्वस्थ समाज की संरचना करने के प्रयास समय समय पर होते रहे हैं और अनेक महापुरुषों ने इस बीमारी से लड़ने का संकल्प लेकर समाज उद्धार के अनेक प्रयास किए हैं
1: और उन्हीं में से एक नाम है लोक शिक्षक गाडगे बाबा जी का, जिनका जन्म 23 जनवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शेण गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम झिंगराजी और माता का नाम सखुबाई था। बचपन में ही उनका जीवन संघर्षमय परिस्थितियों से घिर गया था। जब वे छोटे थे तब उनके पिता का देहांत हो गया, परिणाम स्वरूप माँ के साथ वे मामा के घर चले गए और वहीं उनका लालन पालन हुआ। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कुन्नाबाई जी से हुआ। बाद में वे एक पुत्री के पिता भी बने, पर कुछ दिनों बाद उनका सांसारिक जीवन में मन नहीं लगा।
2: तब समाज को और भी करीब से देखने की इच्छा के कारण उन्होंने गृह त्याग कर दिया। उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। अब परिवार से अधिक सामाजिक जिम्मेदारी उठाना उन्हें महत्वपूर्ण लगने लगा। वे जब भी चलते उनके हाथ में एक झाड़ू और दूसरे हाथ में मिट्टी का गडुआ रहता था और उनके पास हमेशा मिट्टी का गडुआ रहने के कारण लोग उन्हें गाडगे महाराज कहने लगे या गाडगे बाबा।

0: परंपरा और रूढ़ियों से जूझ रहा था। समाज में विषम परिस्थितियों का विकास हो रहा था। तरह तरह की कुप्रथाएं समाज को मथ रही थीं। ऐसे ही युग में गाडगे बाबा ने जन्म लिया और सामाजिक क्रांति के लिए वे हजारों लाखों के प्रेरक बने।
1: गाडगे बाबा धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। उनकी धर्म में आस्था थी, लेकिन संकुचित परिपाटी से वे बंधे नहीं थे। वे कीर्तन के माध्यम से समाज में जन चेतना लाने का कार्य करते थे। उनका मानना था कि गरीबों के बीच रहना, गरीबों की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है, और समाज में घूम घूम कर वो इन्हीं सब बातों का प्रचार प्रसार किया करते थे।
0: उनके विचार बहुत ही उच्च थे। उनका मानना था कि जाति केवल दो हैं, एक स्त्री और दूसरी पुरुष, और जो अपने को श्रेष्ठ बताते हैं वे धूर्त और बेईमान हैं। ऐसे लोग मानव जाति का अपमान करते हैं। सभी मानव एक समान हैं। वे समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में हमेशा संघर्ष करते रहे। उन्होंने दूसरों को उपदेश देने की बजाय पहले अपने व्यवहार में उन उपदेशों का पालन किया। वे जिस भी गांव में जाते, वहां गांव के सभी लोगों को अपने अपने घर से रोटियां लाने को कहते और फिर सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे।

0: गार्गी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक कार्य किए थे। उनका कहना था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार से मानव जीवन के आसपास सभी तरह के अंधकार को दूर किया जा सकता है। हालांकि वे स्वयं उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी रुचि शिक्षित लोगों से भी कहीं अधिक थी। वे शिक्षा के मर्म को अच्छी तरह समझते थे।
1: सादा जीवन उच्च विचार, ये वाक्य गाडगे बाबा जी के जीवन में सार्थक होता था। उनकी वेशभूषा बहुत सादी रहती थी। कपड़ों के नाम पर वे फटे पुराने कपड़े पहनते थे, सिर पर टोपी पहनते थे और हाथ में झाड़ू और मट्टी का गडवा लेकर रास्ता साफ करते हुए चलते थे। और वे व्यक्ति पूजा के बहुत खिलाफ थे। उनके प्रवचन से प्रभावित होकर लोग जब उनके पैर छूते तो वे उन्हें मना किया करते थे, और कहा तो ऐसा भी जाता है कि परेशान होकर लाठी से मार भी दिया करते थे। उनका हर कदम सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित था। वे जीवन भर समाज की विषम परिस्थितियों के विरोध में लड़ते रहे। उन्हें समाज में व्याप्त कुप्रथाओं से बहुत ही पीड़ा होती थी और वे सारे समाज को एक समान तरक्की करते हुए देखना चाहते थे।
0: ऐसा कम ही होता है जब किसी का नाम ही उसके काम की पहचान बन जाए। बाबा गाडगे जी को लोक शिक्षक गाडगे बाबा जी के नाम से जाना जाता है। ये नाम ही इनके काम की पहचान है। गाडगे बाबा जीवन पर्यंत समाज सुधार के काम ही करते रहे और 20 दिसंबर 1956 को गाडगे बाबा की मृत्यु हो गई, पर वे आज भी लोगों के बीच अमर हैं। ऐसे महान समाज सुधारक को हमारा सादर नमन।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद और प्रस्तुति थी स्वराज संस्थान संचालनालय की।
3: हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है, जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इसके अंतर्गत सुनिए मानसिक स्वास्थ्य विषय पर डॉक्टर जेपी अग्रवाल मनोचिकित्सक से पूर्वा खले की बातचीत।
2: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
3: श्रोताओ, आज के युग में इंसान अपने सर्वाइवल के लिए न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से भी जूझ रहा है। श्रोताओ, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे आपसी संबंधों और हमारी दैनिक जीवन के कार्यों को भी प्रभावित करती है और इन्हीं बातों से प्रभावित भी होती है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और बेहतर तरीके से हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, साइकेट्री डिपार्टमेंट, गांधी मेडिकल कॉलेज, हमीदिया हॉस्पिटल। सर, स्वागत है आपका रेडियो आजाद हिंद में।
4: नमस्कार।
3: प्रश्न यही उठता है दिमाग में कि आखिर मानसिक स्वास्थ्य है क्या?
4: जैसे शारीरिक स्वास्थ्य है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो ऐसा नहीं है कि हमें बीमारी नहीं है इसका नाम स्वस्थ है। ये एक स्थिति है जहाँ पे हम अच्छा महसूस करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल सामाजिक रूप से। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य हम तब कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यताओं को पहचान पाता है, अपने प्रतिदिन के तनाव को हैंडल कर पाता है, समाज में अपना योगदान दे पाता है और बेहतर एक तरह से अपना सब कुछ काम कर पाता है, उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। मानसिक रोग ना होना उसका एक फैक्टर है, सिर्फ मानसिक रोग ना होने की वजह से ही वह मानसिक स्वस्थ है ऐसा नहीं है। तो इट्स अ स्टेट ऑफ वेलबींग वेयर एनीवन रिकॉग्नाइजेस हिज पोटेंशियल, वर्क्स प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली, एबल टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कैन हैंडल डे टू डे स्ट्रेस।
3: यानी आपका कहने का मतलब है कि मानसिक अस्वस्थता जो है वो एक परिस्थिति है, बीमारी नहीं है।
4: देखिए, एक तरफ मानसिक स्वास्थ्य है फिर हमें कुछ मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, और अगर हम मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ कर उसे दूर नहीं कर पाते हैं तो हमें मानसिक रोग भी हो सकते हैं।
3: अच्छा,
4: तो एक स्पेक्ट्रम है जिसके एक छोर पर मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है, दूसरे छोर पर पूरी तरह से मानसिक बीमार व्यक्ति है और बीच में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं।
3: कितने प्रतिशत मानसिक रोगों से लोग ग्रस्त हैं, अनुमानित क्या है ये आंकड़ा?
4: इसमें दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होते हैं जिसे बोलते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स।
3: हाँ जी।
4: कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, घबराहट से संबंधित रोग है, नींद से संबंधित रोग है,
3: हाँ जी,
4: या पर्सनैलिटी से संबंधित रोग है, या कुछ कहते हैं हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स या सोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये है कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स। और एक होते हैं जिसे कहते हैं सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स जहां आपको देखने में लगे कि व्यक्ति थोड़ा विक्षिप्त है, इसका व्यवहार सामान्य नहीं है। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स के जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो उसका व्यवहार हमें देखने में बहुत असामान्य प्रतीत नहीं होता है, पर जब हम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट देखते हैं तो उनका आपको दूर से लगता है कि हाँ, इसमें कुछ तो असामान्यता है। टोटल जो प्रेवलेंस है करीब करीब 12.5 से 15% के बीच में प्रेवलेंस है मानसिक रोगों की।
3: अच्छा,
4: भारत में अगर मान लीजिए हमारी आबादी करीब 150 करोड़ के आसपास है तो हमारे यहाँ कम से कम 20 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित रोग या समस्याएं हैं। तो इसमें से जो 1 से 2% हैं वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट हैं और 10 से 12% जो है आबादी वो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर से ग्रस्त है। तो 12 और 2 इतना करीब करीब प्रेवलेंस रेट है।
3: क्या आत्महत्या भी जो है वो मानसिक अस्वस्थता का कारण है?
4: आत्महत्या परिणति है खराब मानसिक स्वास्थ्य की।
3: अच्छा।
4: कोई भी व्यक्ति जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, जो व्यक्ति अपने, जैसे हमने जो डेफिनेशन बताई, अपने स्ट्रेस हैंडल कर पा रहा हो, जो समाज के प्रति योगदान दे पा रहा हो, जो अपनी योग्यता को समझ पा रहा हो, वो व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। कई बार पारिवारिक तनाव की वजह से आत्महत्या हो जाती है।
3: जी।
4: पर वो भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ही बिगाड़ती है। कई बार मानसिक रोग कारण होते हैं आत्महत्या का, जैसे कि डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, सिज़ोफ्रेनिया की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, नशे की लत की वजह से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है
3: जी।
4: तो आत्महत्या डायरेक्ट कारण भी होती है, पारिवारिक समस्याओं की वजह से होती है
3: जी।
4: फिर लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो हम एग्जाम में फेल हुए, या हमारा ब्रेकअप हो गया
3: जी,
4: या हमारी कोई आर्थिक हानि हो गई, फसल का नुकसान हो गया, या कोई और बड़ी हानि हो गई, जिसकी वजह से आमतौर पे हम आत्महत्या पाते हैं
3: जी,
4: वो अल्टीमेटली हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती हैं
3: जी।
4: हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आता
3: जी,
4: ऐसा लगता है जैसे आगे भी सब कुछ अंधकार में है। आत्महत्या इंसान उस अवस्था में करता है जब उसे लगता है आगे भी कुछ ठीक नहीं होने वाला है
3: जी।
4: तो इसी कारण ये कहा जा सकता है कि आत्महत्या जो है और मानसिक स्वास्थ्य आपस में बहुत लिंक्ड हैं
3: जी,
4: और खराब मानसिक स्वास्थ्य की वजह से ही आत्महत्या होती है
3: जी। यदि मानसिक स्वास्थ्य को हम सुधार लें तो आत्महत्या का प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा
4: जी। इसमें ये समझना जरूरी है कि समस्याएं जो होती हैं टेम्परेरी होती हैं, कोई भी समस्या लाइफ में आती है वो थोड़े समय बाद अपने आप सॉल्व हो जाती है, उसका कोई ना कोई हल निकल जाता है। इवन कई बार आपने ट्रैफिक जैम भी देखे हो, जहां इंसान कई बार 3-3 घंटे फंसा रहता है
3: जी।
4: तो आप देखेंगे 3-4 घंटे बाद ट्रैफिक जैम क्लियर हो जाता है
3: हाँ जी।
4: पर उस ट्रैफिक जैम में फंसे हुए व्यक्ति को लगे कि ये ट्रैफिक जैम कभी क्लियर होगा ही नहीं और इससे अच्छा मैं आत्महत्या कर लूं, तो ये वैसी ही अवस्था है जैसा एक कई बार जाम में फंसा हुआ व्यक्ति सोचे कि मेरे को आगे कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, शायद आगे सब कुछ ठीक होगा ही नहीं। तो अगर उस समय उसे किसी भी तरीके से रोका जा सके, क्योंकि आत्महत्या भी एक तरह से फॉर द टाइम बीइंग इंपल्स आता है कि मुझे कर लेना चाहिए
3: जी।
4: उस समय अगर उसकी देखभाल कर ली जाए, उसे अकेला ना छोड़ा जाए, उसका उचित उपचार हो जाए
3: हाँ जी,
4: तो उस आत्महत्या से बचा जा सकता है। तो आत्महत्या या सुसाइड इज अ प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ। अगर आप आंकड़े देखेंगी तो वर्ष 2018 के अंदर करीब 1,34,000 लोगों ने भारत के अंदर आत्महत्या से अपने प्राण गंवाए। ये आंकड़ा बढ़ के 2019 में 1,39,000 तक पहुंचा। 2020 में जब कोविड आया तो ये आंकड़ा एकदम से बढ़ा और 1,53,000 पे पहुंच गया
3: जी।
4: 2021 में 1,53,000 से 1,64,000, क्योंकि उस समय भी कोविड की भयावहता चल ही रही थी
3: जी।
4: और 2022 के अंदर 1,71,000, तो ये इतनी गति से बढ़ रहा था। अभी हाल ही के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपने लेटेस्ट जो आंकड़े हैं 2023 के जारी किए हैं
3: जी,
4: जिसके अंदर 1,72,000 के आसपास व्यक्तियों ने आत्महत्या की वजह से प्राण गंवाए हैं। और इसमें दुख की बात ये भी है कि जो मध्य प्रदेश है, हमारा स्टेट है
3: हाँ जी,
4: वो टॉप 3 में है, वो 3rd रैंक पे है। तो करीब 15,000 व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में अपने प्राण गंवाए हैं आत्महत्या की वजह से।
3: देखिए, यदि इस क्षणिक आवेश को यदि रोका जा सकता है तो आत्महत्या का प्रतिशत काफी कम हो जाएगा। एक बात ये, आप कुछ टर्म्स यूज कर रहे हैं जैसे सिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये चीजें जो क्या है, आप क्या ये मानसिक अवस्था के प्रकार है, अस्वस्थ मानसिक अवस्था के?
4: कोई भी व्यक्ति, उसे लगता है कि कई बार उसे उदासी है, पर हर उदासी डिप्रेशन नहीं है
3: जी।
4: डिप्रेशन हम तब कहते हैं जबकि किसी के मन की उदास अवस्था 2 सप्ताह से ऊपर की हो।
3: अच्छा,
4: 2 सप्ताह से ऊपर व्यक्ति का मन उदास रह रहा है, उसे किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उसे जो चीज पहले प्लेजर देती थी, आनंद देती थी, वो उसे आनंद नहीं दे रही है। उसकी नींद असामान्य हो गई है, उसकी भूख असामान्य हो गई है, या तो कम हो गई है, ज्यादा हो गई है
3: जी।
4: उसके अंदर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, आत्महत्या के विचार आ रहे हैं
3: जी।
4: जब ये लक्षण आते हैं
3: जी,
4: या एक तरह से कहते हैं वो आपको एकदम सुस्त दिखाई देता है, आप डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जैसे ये चल फिर नहीं रहा, ये कोने में सुस्त गुमसुम सा बैठा है
3: जी।
4: तो जब इस तरह के सारे सिम्टम्स आते हैं तब उसे डिप्रेशन कहते हैं
3: जी।
4: कई बार इंसान को भ्रम होता है कि मैं उदास हूँ इसका मैं डिप्रेशन में हूँ, पर डिप्रेशन एक क्लिनिकल बीमारी है जिसका की जो डायग्नोसिस है वो साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है
3: जी।
4: वैसे ही सिज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक रोग है। सिज़ोफ्रेनिया के व्यक्ति में कई बार कुछ अलग अलग तरह के भ्रम या डिल्यूजन्स होते हैं।
3: अच्छा।
4: जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है, मुझे कोई मारने की साजिश रच रहा है, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, या मेरे वाइफ का या मेरी गर्लफ्रेंड का किसी और से अफेयर चल रहा है। तो ऐसे जो बिलीफ्स हैं, गलत बिलीफ्स हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं
3: जी, शक,
4: और जो किसी और समझाने से ठीक नहीं होते
3: जी जी,
4: तो डिल्यूजन्स हो सकते हैं। फिर कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देती है जो व्यक्तियों को वैसे नहीं आती।
3: अच्छा।
4: ऐसे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी आवाजें उसे सुनाई देने लग जाती हैं। फिर कई बार जो व्यवहार होता है वो बहुत विकृत सा हो जाता है, वो अपना स्वयं का देखभाल नहीं कर पाते हैं, दिनों दिनों तक नहाते नहीं है, गुमसुम रहते हैं। तो ये भी सब सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण हो सकते हैं।
3: तो ये सब अवस्थाएं हमारे अंदर आती क्यों है, इसका कारण क्या है?
4: देखिए, जो मानसिक रोग हैं उनका एक जो डिजीज डेवलप करने का मॉडल है उसे हम कहते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल
3: जी।
4: तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पहला, वो है बायोलॉजिकल।
3: अच्छा।
4: पहला कारण है जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस,
3: यानी अनुवांशिक भी हो सकता है।
4: हमारे अंदर सभी चीजें अनुवांशिक हैं एक तरह से। हमारे स्किन के कलर से लेके, हमारी हाइट से लेके, हमने जो भी अपनी लाइफ में मिला है हमें, वो अपने माता पिता के जीन्स से ही मिला है।
3: जी।
4: तो डायबिटीज भी उतनी ही अनुवांशिक है जितनी की सिज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन।
3: ओके।
4: बीमारी के दोनों फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स, एक होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो सबसे पहला तो जेनेटिक्स कारण है। फिर हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनका आपस में जो कम्युनिकेशन है वो कुछ केमिकल्स के थ्रू होता है जिसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो इम्बेलेंस होते हैं वो मानसिक रोग करते हैं।
3: अच्छा।
4: अलग अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर है जिनसे अलग अलग तरीके के मानसिक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक कारण भी होते हैं। मेरी लाइफ में कोई नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, किसी की फैमिली में डेथ हो गई, या मेरी नौकरी छूट गई
3: जी,
4: या मेरा ब्रेकअप हो गया, या मैं एग्जाम में फेल हो गया
3: जी।
4: ये सब वो कारण है जो बीमारी को एकदम से बढ़ा देते हैं। बीमारी हो सकता है हमारे शरीर के अंदर कहीं
3: लक्षण
4: हुई हो
3: जी,
4: पर जब हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है तो कई बार वो कारण एकदम से उभर के सरफेस में आ जाते हैं
3: जी, जी।
4: फिर हर इंसान की स्ट्रेस को या तनाव को हैंडल करने की स्किल्स हैं, कोपिंग स्किल्स हैं। कई बार हमारी कोपिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती, हम खान पान पे ध्यान नहीं देते, हमारी नींद के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो हमारी कोपिंग स्किल्स वीक हो जाती हैं और उस वजह से भी कई बार मानसिक रोग बढ़ जाते हैं। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर साइकोलॉजिकल और सोशल कंपोनेंट भी इम्पोर्टेंट है।
3: तो मतलब जैसे भी हमें मालूम पड़ता है सर कि कोई व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो फिर हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये अस्वस्थ है और हमें परामर्श की जरूरत है, चिकित्सकीय परामर्श की जरूरत है?
4: किसी भी व्यक्ति के अगर आपको व्यवहार में बदलाव नजर आता है
3: जी,
4: अगर कोई गुमसुम रहने लगा है, कोई ज्यादा बात करने लगा है, कोई शक करने लगा है
3: जी,
4: किसी की नींद कम हो रही है, या वो खाना नहीं खा रहा है टाइम से, या वो नशा अधिक कर रहा है, या वो छोटी छोटी बातों पर चिंता अधिक कर रहा है, घबरा जाता है
3: जी,
4: तो अलग अलग तरह के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। तो एक जैसे बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, उसके अंदर व्यक्ति कई बार बार बार हाथ धो रहा होता है या बार बार चीजों को चेक कर रहा होता है।
3: ओके।
4: तो अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं, पर जो ब्रॉडली हमने बताया कि नींद के अंदर जो चेंजेस आते हैं, व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं
3: जी,
4: नशा जो नज़ की जो प्रवृत्ति है
3: जी, जी।
4: वो ये सब अगर किसी में हो रही है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, या आत्महत्या के तो अगर किसी में विचार भी आ रहे हैं तो वो भी मानसिक रोग का लक्षण हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति को हमें अतिशीघ्र मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक
3: जी
4: इनमें से किसी के पास अवश्य लेके जाना चाहिए ताकि उसका उचित डायग्नोसिस और उपचार हो पाए।
3: सर एक चीज आती है, अलग अलग वर्गों में अलग अलग मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है, जैसे बच्चे हैं, तो बच्चों की मानसिक अस्वस्थता हमें कैसे पता चलती है?
4: आजकल अगर हम देखें तो आपने कभी अखबार पढ़ा हो तो कई बार ऐसी खबर आती है कि 6 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली
3: जी,
4: 8 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, बहुत चिंताजनक है।
3: हाँ जी।
4: बच्चों के अंदर जो आमतौर पे डिसऑर्डर्स मिलते हैं वो एक होता है जिसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर।
3: अच्छा।
4: जिसके अंदर बच्चा जो है उसकी अटेंशन स्पैन कम होता है जिससे वो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर हो जाता है, और वो बहुत हाइपर एक्टिव होता है, ऐसा एकदम भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो एक ये बीमारी है। दूसरी बच्चों से संबंधित कई बार होता है कि बच्चों में बुद्धि का विकास बराबर नहीं हो पाया
3: जी।
4: तो जैसे मान लीजिए माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है या मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, मंद बुद्धि जिसे कह सकते हैं, तो वो समस्याएं कई बार बच्चों में देखने को मिलती है
3: जी।
4: फिर बच्चों में भी आजकल कॉम्पिटिशन और पीयर प्रेशर इतना हो गया है कि उनमें भी जो बीमारियां हम पहले मानते थे बड़ों में ही मिलती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ओसीडी, वो जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वो बच्चों में भी हमें देखने को मिल रही है।
3: जी, जी।
4: तो बच्चों में भी कई बार अर्ली ऑनसेट साइकोसिस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ओसीडी हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो बच्चों में भी इस तरह की समस्याएं मिल सकती हैं।
3: तो इसका भी चिकित्सकीय समाधान है?
4: बिल्कुल, इनका भी उचित चिकित्सकीय या मनोवैज्ञानिक समाधान है।
3: हमने बच्चों की बात की, ऐसी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
4: महिलाओं के अंदर कई बार जो पीरियड्स का टाइम होता है उसके जस्ट पहले उनके मूड के अंदर कुछ चेंजेस रहते हैं जिसे हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। कभी रोने जैसा मन होता है, या इरिटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है, या उदासी जैसा लगता है, खाली खाली सा लगता है
3: जी।
4: तो वो समस्या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में कहलाती है। इसके अलावा जब हमारी डिलीवरी होती है
3: जी,
4: तो डिलीवरी के बाद करीब 50-70% महिलाओं को पहले सप्ताह के अंदर पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज मतलब रोने जैसा मन, उदासी, जो डिप्रेशन जितनी गंभीर नहीं है पर कुछ दिनों तक रहती है। फिर 50-70% में पोस्टपार्टम ब्लूज हैं, तो करीब 8-10% महिलाओं के अंदर डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण भी आते हैं।
5: अच्छा,
4: डिप्रेशन के लक्षण जैसे बाकी लोगों में आते हैं कि मन उदास हो गया है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, जो चीज पहले आनंद दे रही थी उसमें अब मजा नहीं आता है, नकारात्मक विचार आते हैं, एक तरह से हम थोड़ा सा इनएक्टिव से हो गए हैं, और 1% या 0.5% के अंदर कई बार गंभीर साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आते हैं जिसे कहते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस। इसके अलावा महिलाओं को क्योंकि अपनी लाइफ को वर्क और होम के बीच में बैलेंस करने की जरूरत पड़ती
5: जी,
4: है
5: जी,
4: क्योंकि समाज आगे बढ़ा है पर महिलाओं ने जैसे बाहर के काम करने चालू कर दिए पर पुरुष अभी भी घर उतना अच्छा नहीं संभाल पाते जितने महिलाएं संभाल पाती
5: हैं।
4: तो महिलाओं को क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ऑफिस में भी कई बार अच्छा माहौल नहीं होता और घर में भी कई बार काम का बोझ होता है
5: जी।
4: तो उस वजह से वो कई बार ज्यादा स्ट्रेस फील करती हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण ज्यादा मिल सकते हैं
5: जी। तो जैसे हमने बच्चों की बात की, महिलाओं की बात की, ऐसे ही एक बहुत बड़ा वर्ग है वृद्धों का
4: जी
5: ना। तो बुजुर्गों में ये जो मानसिक स्वास्थ्य जो है जैसे अल्जाइमर, तो अल्जाइमर भी क्या मानसिक अस्वस्थता में आता है?
4: बुजुर्गों में कई तरह के मानसिक विकार मिल सकते हैं।
5: हाँ जी।
4: और हमारी आबादी जैसे आज की तारीख में करीब 10-12% हमारी आबादी ऐसी है जो वृद्ध है
5: जी।
4: पर जैसे जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटी बेहतर हो रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है हमारी 25-30% आबादी वृद्ध रहे, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में है
5: जी।
4: जैसे जापान में देखेंगे उनकी करीब 35% आबादी वृद्ध है। तो वृद्धावस्था में कई तनाव आते हैं जो व्यक्ति को लाइफ में पहले वो कर पा रहा था, उसका शरीर साथ दे रहा था, वो काम कर पा रहा था, शरीर की कई बीमारियां आई तो वो काम करना कम हो गया, तो उसका मन खराब रहना चालू हुआ। उसने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया पर बच्चे शायद उतनी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वजह से भी व्यक्ति उदास रहता है, खिन्न रहता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है कई बार। तो वृद्धावस्था में डिप्रेशन के प्रकरण ज्यादा देखने को मिलते हैं, इवन सुसाइड के केसेस भी बढ़ जाते हैं वृद्धावस्था में। और क्योंकि कई बार परिवार वाले हो सकता है पैसा तो फिर भी शायद वृद्ध व्यक्ति के ऊपर खर्च कर दें, उसके कपड़े ला दें या उनको कहीं ले जाएं, पर टाइम की कमी है और वृद्ध व्यक्ति को लगता है कि उनके साथ कोई ना कोई अगर समय बिता सकता है
5: जी।
4: तो उसके कारण वो अकेलापन फील करते हैं। और वृद्ध व्यक्ति में एक चीज देखने में आती है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें से अगर दोनों जीवित हैं तब तो वो एक दूसरे की देखभाल कर लेते हैं।
5: हाँ जी।
4: और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे के ऊपर बड़ी भारी समस्या आती है
5: जी।
4: कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो चला जाता है। तो वृद्ध जनों के मानसिक स्वास्थ्य की विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए।
5: मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए और हमारे घर वालों के लिए हम क्या कर सकते हैं?
4: लाइफ में हमें एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए अपनी
5: जी।
4: अगर हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आगे से आगे की तृष्णा जो है वो हमें एक तरह से तनाव देती है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है पर्याप्त नींद, न्यूट्रिशियस डाइट
5: जी,
4: कुछ एक्सरसाइज, अगर लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है तो उसे हैंडल करने के लिए अच्छी कोपिंग मैकेनिज्म, नशे से दूरी
5: जी,
4: और समाज के अंदर एक्टिव योगदान। अगर हम रिलेशनशिप्स में अच्छे से रह रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर कम निर्भर हैं, तो हम मानसिक रूप से ज्यादा अच्छा स्वस्थ रह पाएंगे।
5: तो आपने जो टेक्निक्स की बात की, कोपिंग टेक्निक्स की, वो क्या है?
4: जब इंसान के लाइफ में तनाव आता है तो वो उसे किस तरीके से हैंडल करता है
5: जी।
4: कोई व्यक्ति होता है जो सोचता है कि चलो आज मेरे को लाइफ में बुरा दिन था, मैं 2 पैग अल्कोहल ले लेता हूँ, उससे शायद मेरे को शांति मिले
5: जी।
4: तो ये अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म हुआ। कुछ लोग काम के तनाव को चाय पी के कम कर रहे होते हैं।
5: हाँ जी।
4: तो वो भी अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है समस्याओं को समझना
5: जी,
4: कि भाई हर समस्या शायद आपकी अपनी नहीं है, क्या मुझे अभी उसके ऊपर निर्णय लेना है या उसको टैकल करना है, और क्या मैं बाद में कर सकता हूँ। फिर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कोपिंग मैकेनिज्म। फिर जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हमें कुछ ऐसा समय देना चाहिए कि जिससे हम रिलैक्स कर पाए। तो योगा इज अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म, प्राणायाम इज अ गुड कोपिंग मैकेनिज्म। ऑफिस का तनाव ऑफिस के बाहर तक नहीं आना चाहिए। ऑफिस के तनाव को हमें ऑफिस में छोड़ के आना चाहिए।
5: हाँ जी।
4: अगर वो तनाव हम घर पे लाते हैं तो हम घर के वातावरण को और दूषित और खराब करते हैं।
5: हाँ जी।
4: और जिससे हमारे बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमें एक तरह से समझदारी से अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और तनाव को जितना हद तक हम बेहतर प्रबंधन कर पाए या लिमिट कर पाए
5: जी,
4: उतना हमारे लिए अच्छा है।
5: सर, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, आपके पास आता है, तो आप उसका क्लिनिकली उपचार करते हैं या फिर साइकोलॉजिकली उपचार करते हैं, ये कैसे डिसाइड होता है?
4: जैसे कोई मरीज हमारे पास आया, हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि क्या क्या उसके रोग कब उत्पन्न हुए, उसका एग्जामिनेशन या मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, बीमारी की गंभीरता के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि इसे किस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी फिजिशियन के पास गया, उसका ब्लड शुगर 125 है जो कि सामान्य से थोड़ा ऊपर है, तो हमें क्या सलाह मिलेगी कि भाई खाने में ये चीजें कम खाओ, वॉक करो, अभी तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है। पर वही पेशेंट अगर डॉक्टर के पास आया और उसका शुगर 350 है, तो फिर जो सलाह थी डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, वो तो मिलेगी, पर दवाई के लिए वेट नहीं किया जाएगा, दवाई चालू करनी पड़ेगी।
5: जी।
4: तो अगर माइल्ड डिप्रेशन का पेशेंट है तो सिर्फ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से भी उसका उपचार हो सकता है, पर आमतौर पर क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता कम है तो मरीज बीमारी बढ़ा के ही आता है। तो जब बढ़ी हुई बीमारी के अंदर मरीज आता है तो उसे हमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करनी पड़ती है और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। नियमित इलाज से मरीज की हालत में सुधार आता है। जैसे जैसे मरीज की हालत में सुधार आता है उसकी दवाइयों को धीरे धीरे कम करके बंद करने की दिशा में जाया जाता है।
5: अच्छा।
4: व्यक्ति नियमित इलाज करता है तो उसकी दवाई समय के साथ में बंद हो जाती है, पर इसमें भी समस्या यह है कि कई बार मरीज अपने आप ही दवाई बंद कर देता है या रेगुलर फॉलोअप के लिए नहीं आता है, तो ऐसे में बीमारी थोड़ी और लाइलाज हो जाती है।
5: हमें यह कैसे पता चलता है कि अब व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है?
4: उसके व्यवहार के ऑब्जर्वेशन से
5: जी,
4: उसके जो घर वाले उसके बारे में हमें हिस्ट्री देते हैं उससे, और एक मानसिक स्थिति परीक्षण मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जो मरीजों पर किए जाते हैं आवश्यकता पड़ने पर।
5: अच्छा।
4: कुछ इन्वेंटरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं, कुछ बैटरीज होती हैं जो लगाई जाती हैं, जिनके ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि बीमारी की क्या अवस्था है और क्या उपचार दिया जाना चाहिए।
5: अपने आप को कैसे जान सकते हैं कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ?
4: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने
5: जी।
4: अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो मध्य प्रदेश का है उसमें हमने और हमारे कुछ सहयोगियों ने मिलकर एक ऐप तैयार किया, एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। उसका नाम है मनहित।
5: मनहित,
4: मनहित
5: जी।
4: आप वो मनहित ऐप इंस्टॉल कीजिए और उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट का कॉलम है
5: जी।
4: तो जैसे आप सेल्फ असेसमेंट क्लिक करेंगे तो उसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसका जवाब आपको हाँ ना में क्लिक करना है। उसमें कई सारी हमने अवेयरनेस मटेरियल जानकारी भी डाली है। तो एक बहुत अच्छा ऐप है जिसके माध्यम से हम स्वयं का मानसिक स्वास्थ्य जज कर सकते हैं।
5: अच्छा।
4: उस मनहित ऐप को हमने टेलीमानस एक तरह से राष्ट्रीय हेल्पलाइन सर्विस है।
5: अच्छा।
4: जो कि केंद्र सरकार की मदद से चल रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उसे संचालित कर रहा है
5: जी।
4: उसका नंबर है 14416।
5: एक बार आप फिर दोहरा दीजिए तो अच्छा रहेगा सर।
4: 14416 नंबर है जिसके अंदर ये हेल्पलाइन चलती है टेलीमानस। इसके अंदर ट्रेन काउंसलर्स जो होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी समस्याएं सुनते हैं और उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।
5: तो बहुत ही नई जानकारी हम लोगों को मिली है, क्योंकि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का तो बहुत ध्यान रख लेते हैं सर, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हमारे पास शायद समय की कमी है और जागरूकता की सबसे ज्यादा कमी है। आप हमारे श्रोताओं को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए क्या संदेश देंगे सर?
4: भरपूर नींद लें, पौष्टिक आहार खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज अवश्य करें, तनाव प्रबंधन करें, स्ट्रेस में ना रहें और नशे से दूर रहें। और नशे में आजकल मोबाइल भी आ गया है तो मोबाइल को भी लिमिट कीजिए।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
5: तो आज थे हमारे साथ डॉक्टर JP अग्रवाल, जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी पूर्वा। तो दीजिए अब इस कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा 90.8 MHz पर। आप सुन रहे रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद आज हमारे बीच नहीं है, पर आज के इस अशांत काल में हमें स्वामी जी बहुत याद आते हैं। उनकी कही हुई बातें आज और भी ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। उनका कहना था,
1: आज की हर समस्या का समाधान हमारे अतीत में निहित है। हमें अपने अतीत से, पूर्वजों से, उनके बताए गए समाधानों से अपना रास्ता खोजना होगा।
2: स्वामी जी अमेरिका प्रवास के दौरान इस सत्य से परिचित हुए थे कि पश्चिम में आज जीवन चमकदार है, चकाचौंध कर देने वाला है। पर वो सभी बातें सतह ही हैं, क्योंकि उनकी नींव अतीत में नहीं है, वे वर्तमान में जीते हैं। उनका इतिहास मात्र 400-500 साल पुराना है। उस अतीत में हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान समाहित नहीं है, हमारे हजारों सालों का अनुभव वहां नहीं दिखता। वहां प्रज्ञा नहीं, आध्यात्मिकता नहीं, संतोष नहीं, है तो केवल सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए दौड़।
0: वहां जाकर स्वामी जी ने जब भारतीय मानसिकता, अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सबको बताई, तो वो अमेरिका निवासियों के लिए एक नई उपलब्धि थी, क्योंकि उनके पास अतीत से सीखने लायक कोई बात नहीं थी। वहां जाकर स्वामी जी ने अनुभव किया था कि पश्चिम से हमें विज्ञान की नई बातें सीखनी होंगी, भारत में शिक्षा का प्रसार करना होगा, पर अपने अतीत को भुलाकर नहीं। उन्हें युवकों पर भरोसा था, नई पीढ़ी का उन्होंने आह्वान किया था। वे नई पीढ़ी को ही भावी भारत का कर्णधार मानते थे, उन्हें अपने आदर्शों से आलोकित करना चाहते थे। वे कहते थे,
1: बहती हुई नदी की धारा ही स्वच्छ, निर्मल और स्वास्थ्यप्रद रहती है। उसकी गति अवरुद्ध हो जाने पर उसका जल दूषित और अस्वास्थ्यकर हो जाता है। नदी यदि समुद्र की ओर चलते चलते बीच में ही अपनी गति खो बैठे तो वो वहीं पर बद्ध हो जाती है। प्रकृति के समान ही मानव समाज में भी एक सुनिश्चित लक्ष्य के अभाव में राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है, और सामने यदि सुनिश्चित लक्ष्य हो तो आगे बढ़ने का प्रयास सफल और सार्थक होता है। हमारे आज के जीवन के हर क्षेत्र में ये बात याद रखने योग्य है। अब इस लक्ष्य को निर्धारित करने के पूर्व हमें विशेष रूप से भारत के चिंतन, इतिहास, आदर्श तथा आध्यात्मिकता का ध्यान रखना होगा।
2: स्वामी जी ने इसी बात पर बल दिया था कि देश की सनातन परंपरा तथा आदर्शों के प्रति सचेत न होने पर अव्यवस्थित विकास होगा, और संभव है कि आखिरकार वो राष्ट्र को प्रगति के स्थान पर पतन की ओर ले जाए। उन्होंने कहा,
1: आज के युवा समाज को, जिसमें देश का भविष्य निहित है और जिसमें जागरण के चिन्ह दिखाई दे रही हैं, अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढ लेना चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना होगा ताकि उनके भीतर जगी हुई प्रेरणा तथा उत्साह ठीक पथ पर संचालित हो। नहीं तो शक्ति का ऐसा अपव्यय या दुरुपयोग हो सकता है जिससे मनुष्य की भलाई के स्थान पर बुराई ही होगी। भौतिक उन्नति तथा प्रगति अवश्य ही प्रशंसनीय है, परंतु देश जिस अतीत से भविष्य की ओर जा रहा है, उस अतीत को अस्वीकार करना निश्चय ही निर्बुद्धिता का परिचायक है। अतीत की नींव पर ही राष्ट्र का निर्माण करना होगा। युवा वर्ग में यदि अपने विगत इतिहास के प्रति कोई चेतना न हो तो उसकी दशा प्रवाह में पड़े लंगरहीन नाव के समान होगी। ऐसी नाव कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। इस महत्वपूर्ण बात को सदैव स्मरण रखना होगा। मान लो कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, परंतु यदि हम किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे हैं तो हमारी प्रगति निष्फल रहेगी।
0: स्वामी जी को आधुनिकता से कोई बैर नहीं था। आधुनिकता को वे मन से समर्थन देते थे, परंतु उनका मत था कि आज के युवा आधुनिकता के प्रवाह में बह ना जाएं, वे विवेक से काम लें।
1: आधुनिकता कभी कभी हमारे सामने चुनौती के रूप में आ खड़ी होती है। इसका तात्पर्य ये है कि आधुनिक समाज राष्ट्रहित के लिए उसकी शक्ति का उपयोग करने के प्रयास में अंधकार में भटकता रहता है। आधुनिकता की इस शक्ति को एक सुनियोजित महान लक्ष्य की ओर परिचालित करना होगा।
0: इसी कारण स्वामी जी ने कहा है कि युवा वर्ग के सम्मुख एक लक्ष्य स्थापित करना होगा और इस ओर ध्यान देना होगा कि युवकगण उत्साह और प्रेरणा के साथ अपनी क्षमता का सदुपयोग कर सके। युवा शक्ति के भीतर जो सक्रियता और उद्दाम भावावेग देखने को आता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे कुछ करना चाहते हैं और ये उसी का लक्षण है। उनके नेतृत्व का भार जिन वयस्क लोगों पर है, उन्हें इस बारे में सोच विचार करना चाहिए।
2: हमारे समाज में हर नई पीढ़ी को बुरा समझने की परंपरा सी बन गई है। पुरानी पीढ़ी युवकों की नई सोच, नई कार्य प्रणाली की हमेशा आलोचना करती रही। स्वामी जी को ये आलोचना पसंद न थी। वे नई पीढ़ी के नए उत्साह, नई चेतना से परिचित थे। उन्होंने युवाओं का पक्ष लेकर भारतवासियों से कहा था,
1: युवकों को केवल निधि निषेध की सीमा में आबद्ध न रखकर उन्हें स्पष्ट मार्ग दिखाना होगा। प्रायः देखने में आता है कि वयस्क लोगों को युवा वर्ग के केवल दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं। वयस्कों की गलती ये है कि वे जानने का प्रयास ही नहीं करते कि युवक युवतियां क्या सोचते हैं तथा क्या करना चाहते हैं। इसलिए वयस्क गण युवा वर्ग की निंदा करते हैं और उसके फलस्वरूप युवा वर्ग भी बड़ों की उपेक्षा करता है, उनकी परवाह नहीं करता। तब मामला आग से खेलने जैसा हो जाता है। जो आग घर में दीपक बनकर प्रकाश फैलाती है, वही सब कुछ जलाकर राख भी कर सकती है। यौवन के भीतर जो शक्ति है, वो भली भी नहीं है और बुरी भी नहीं है। ठीक उपयोग करने पर वो कल्याणकारी होगी तथा दुरुपयोग करने पर विध्वंसक।
2: स्वामी जी ने तरुणों की प्राण शक्ति को सही रूप में पहचाना था। वे उस अनंत ऊर्जा को भारत के नव निर्माण के कार्य में लगाना चाहते थे।
1: एक प्रचंड शक्ति को किसी सीमा के भीतर आबद्ध रखने पर उसमें विस्फोट हो जाता है। युवा वर्ग के भीतर जो प्रबल प्राण शक्ति है, उसे ठीक पथ पर न चला पाने से जो संकट उत्पन्न होगा, उससे पूरा देश तथा समाज प्रभावित होगा। कभी कभी वयस्कों की अवस्था वृद्ध तालाब के समान हो जाती है। वे सोचते हैं कि उन्हीं का सोचना सही है और अपने समय में वे जो कुछ करते आए हैं, आज के युवकों को भी वही करना चाहिए। अपनी युवावस्था की बातें यदि उन्हें स्मरण हो तो अवश्य ही वे स्वीकार करेंगे कि उनका वो काल संघर्षहीन नहीं था। उनमें भी उपाम तरंगें उठी थीं और जीवन पथ पर वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए, त्यों त्यों अनुभव के फलस्वरूप उनके दृष्टिकोण में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता गया है। अतः प्रज्ञा वयस्क गण यदि अपने पुराने अनुभवों के आलोक में वर्तमान युवा वर्ग को देखें और उसी अनुभव के आधार पर सहानुभूति और ममता के साथ नवयुवकों के भाव समझने का प्रयास करें, तो इसका अच्छा फल होगा।
0: उन्होंने नवयुवकों को भी समझाया था कि जो भी पुराना व प्राचीन है वही खराब है, ऐसी बात नहीं। हर पुरानी प्रथा को नकारने की जो प्रवृत्ति नई पीढ़ी में दिखती है, वो ठीक नहीं। प्राचीन अनुभव हमारे धरोहर हैं, उनका आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा,
1: युवकों को समझना होगा कि वयस्कों की भी आवश्यकता है। पिछले अनुभवों की एक धारा को हम वहन करते हैं, जिसे

0: बढ़ जाएं, पथ भ्रष्ट न हो जाएं। एक पथ प्रदर्शन नितांत आवश्यक है और वो सतर्कता के साथ उनके सम्मुख रख देना होगा।
1: सुनने में आता है कि हमारे तरुणों में नैतिक मूल्य बोध का अभाव है, वे उद्दंड हैं, नास्तिक हैं इत्यादि। संभवतः हम लोग जब तरुण थे तो हमारे वयस्क लोग भी हमारे विषय में ऐसी ही बातें कहा करते थे। उनकी भी ऐसी धारणा थी कि उनका समय स्वर्ण युग था और अब हर जगह अवनति तथा पतन दिखाई दे रहा है। फिर वर्तमान में हम लोग भी उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि पहले अर्थात हमारे यौवन काल में सब कुछ ठीक था, परंतु अब सब बिगड़ गया है। यदि ऐसा ही है तो वर्तमान पीढ़ी के जन्मदाताओं अर्थात हम पर ही उनमें ये विश्वास तथा मूल्य बोध लौटा लाने का उत्तरदायित्व है।
2: स्वामी जी ने हमें सावधान किया है कि प्राचीन का विनाश करने से उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं होता, पुराना सब कुछ त्याज्य है। ऐसा दृष्टिकोण अनुदार व संकीर्ण है। हम अपने अतीत की नींव पर खड़े हैं, अतीत ने ही हमें वर्तमान तक पहुंचाया है, और ये देखना वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि हमारे भावी वंशधर और भी अधिक सुदृढ़ नींव पर खड़े रह सके। इस विषय में सावधान रहना अतीत वर्तमान तथा भविष्य के सभी लोगों का कर्तव्य है।
1: जीवन एक प्रवाहमान धारा है और राष्ट्रों का इतिहास भी वैसा ही है। अतीत से ही वर्तमान का उद्भव हुआ है, इसी प्रकार वर्तमान ही हमें भविष्य के द्वार तक पहुंचा देगा। बड़ी सावधानी तथा मनोयोग के साथ वर्तमान तथा अतीत का अनुशीलन करके युवा वर्ग का पथ प्रदर्शन करना होगा और ये भी देखना होगा कि वो भविष्य के साथ सुसंगत हो। आधुनिकता की यही सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तरुणाई की उपाम शक्ति तरुणों को अशांत कर डालती है। उस शक्ति को इस प्रकार परिचालित करना होगा कि उनकी इस शक्ति प्रेरणा तथा उत्साह का सदुपयोग हो और वो राष्ट्र एवं समग्र विश्व के कल्याण में नियोजित हो।
2: स्वामी जी ने बताया है कि अतीत की दृढ़ भित्ति रहे तभी समस्या का उचित समाधान किया जा सकता है, परंतु उसके साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अतीत कहीं तरुणों के विकास का पथ अवरुद्ध न करे, अतीत भी वर्तमान के साथ सामंजस्य रखकर अग्रसर हो। संभव है कि पहले के लोग कुछ मार्गदर्शन कर गए हों, उसमें कुछ फेर बदल किया जा सकता है, किंतु पूर्णतया उस पथ को त्याग कर अलग पथ पर चलने का प्रयास उचित नहीं।
1: स्वामी जी के मतानुसार इससे शक्ति का केवल अपव्यय होता है। उनका कहना है कि गंगा की धारा को बलपूर्वक ही उसके उद्गम गोमुख तक लौटाया नहीं जा सकता, तथापि उसे ऐसे ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है कि वो समाज तथा देश के लिए कल्याणकारी हो, नहीं तो वो प्रवाह भले बुरे सब कुछ को बहा ले जाएगा और विध्वंसक होकर भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा। स्वामी जी का मत था,
0: अतीत से प्राप्त अनुभव तथा ज्ञान को आयात करके युवा वर्ग भविष्य की समृद्धि के लिए उसका सार्थक उपयोग करे, यही कार्य महत्वपूर्ण है। युवा वर्ग में अतीत के प्रति उदासीनता का भाव दिख रहा है, समाज की वर्तमान व्यवस्था से वे संतुष्ट नहीं है, वे इसमें परिवर्तन चाहते हैं। उन्हें जो अनुभव हो रहे हैं वो निश्चय ही उसी के आधार पर अतीत का मूल्यांकन करेंगे, पर देश के विगत अनुभव के साथ सामंजस्य रखकर उनके अनुभव को भी संशोधित करने की जरूरत है। बहुमुखी विश्वव्यापी अत्याधुनिक भावधारा का ग्रहण निंदनीय नहीं, अपितु इसे ग्रहण करने की मानसिकता प्रशंसनीय ही है। साथ ही अपने पांव के नीचे की मिट्टी को भूलने से काम नहीं चलेगा, और वो मिट्टी है भारत का इतिहास, भारत की असाधारण आध्यात्मिक शक्ति। प्रारंभ से आध्यात्मिक जीवन ही इस देश का लक्ष्य रहा है। हमें लगता है कि युवक गण इसके विरोधी हैं, जड़वादी हैं, उनका उद्देश्य जागतिक भोग सुख है, पर यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। संभव है कि हम उन्हें ठीक ठीक परिचालित न कर सके हों, उनके सम्मुख एक ऐसा सुस्पष्ट आदर्श न रख सके हों जिसकी ओर वे अपनी अदम्य प्राण शक्ति को प्रवाहित कर पाते।
2: अतीत तथा भविष्य के बीच एक सुदृढ़ संयोग सूत्र की जरूरत है। और युवा वर्ग ही वो संयोग सूत्र है। जब ये अपनी आशा आकांक्षाएं व्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सर्वदा मना करना, रोक देना उचित नहीं। उन्हें इस प्रकार से शिक्षित कर लेना होगा कि वे देश के उज्जवल भविष्य को गढ़ डालने की आशा आकांक्षा का पोषण करें, और अतीत से अनुभव लेकर ही ऐसी शिक्षा हम उन्हें दे सकेंगे। इसके बाद हम ध्यान पूर्वक देखेंगे कि वे किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार युवा वर्ग को ठीक मार्ग पर चला पाने से देश अपने गौरवमय भविष्य की ओर अग्रसर होगा।
1: हम लोग बैलगाड़ी के युग से काफी दूर निकल आए हैं। संभवतः इस समय हम जेट युग की सीमा पर हैं और इसके बाद रॉकेट युग में भी पहुंचेंगे। तब हम केवल चांद पर ही जाने की बात नहीं सोचेंगे, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह और उसके भी पार जाने की बात सोचेंगे। तात्पर्य यह है कि हम जहाँ हैं वहीं सीमाबद्ध नहीं रह सकते। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, चरैवेति, बढ़े चलो, हम वही प्रगति चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा है,
0: लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुको मत, उठो जागो, अभीष्ट की प्राप्ति हुए बिना रुको मत। हम लोग आलस्य, प्रमाद, विलास, आराम में तंद्रा मग्न है, भूल रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है। वृद्ध हो जाने के कारण जो लोग अपनी शक्ति खो बैठे हैं, वे सोचते हैं कि कोई उनकी निद्रा में विघ्न ना डाले, और तरुणों का उद्दाम उत्साह उनकी इस शांति में बाधा डाल रहा है। पर उन्हीं लोगों ने तो इन्हें जन्म दिया है, अतः ऐसा दृष्टिकोण उचित नहीं है। उन्हें यह स्मरण रखना होगा कि इन तरुणों को उनके पथ पर उत्साहित करना तथा अपने अनुभव से उनका पथ प्रदर्शन करना उन्हीं का उत्तरदायित्व है।
1: स्वामी जी कहा करते थे,
0: हमने अनेक भूलें की हैं, हमारे सुदीर्घ इतिहास में कई उत्थान पतन हुए हैं। सभी राष्ट्रों के इतिहास में ऐसा चक्रवात उत्थान पतन होता रहा है, कहीं भी निरंतर समृद्धि देखने में नहीं आती। उत्थान पतन के बावजूद हमारी ये प्राचीन जाति अब भी जीवित है। अन्य अनेक जातियों का उत्थान हुआ है, उन्होंने धूमकेतु के समान इतिहास के पन्नों को आलोकित किया है, और फिर धूमकेतु के समान ही क्षणिक आभा दिखाकर विलुप्त भी हो गए हैं। परंतु हमारा देश अति प्राचीन है, यह विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है, और इसके अतीत की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए कि उसके अतीत के दृष्टिकोण में एक प्रकार की सुसंगति एवं स्थिरता थी, और इसलिए वह पृथ्वी तल से पूर्ण रूपेण लुप्त नहीं हुआ। यूनान, रोम तथा मेसोपोटामिया आदि महान सभ्यताएं कभी इतिहास के पन्नों में चमक रही थी और फिर वे अदृश्य भी हो गई हैं। परंतु भारत के मामले में ऐसा नहीं हुआ।
2: स्वामी जी इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे। विश्व का प्राचीन इतिहास पढ़कर उन्होंने अपना मत बनाया था और हमें प्राचीन भारतीय परंपराओं की दुहाई दी थी। उन्हें भारत पर पूर्ण विश्वास था कि चाहे कितने ही आंधी तूफानों का सामना करना पड़े, वो जरूर फिर से उठ खड़ा होगा। भारत का विनाश संभव नहीं है।
0: भारत वर्ष की सनातन जीवन धारा आज भी अबाध रूप से प्रवाहित हो रही है। यदि कभी यह धारा अधोगामी हुई है, जब भी लगा है कि इस जाति का अब पृथ्वी से लोप हो जाएगा, तभी न जाने कहां से एक नवीन शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उसी शक्ति के आधार पर भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को बारंबार पुनर्जीवन प्राप्त हो रहा है। भारत की अतीत आध्यात्मिक परंपरा उसकी सभ्यता की नींव के समान है। उसके प्रति अटल श्रद्धा रहे बिना किसी नवीन भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, करने से भी वो स्थायी न होगा। यह भूलना हमारे लिए कभी उचित न होगा कि भारतवर्ष असाधारण ऊर्जा एवं असीम शक्ति का आधार है, और इसी कारण युवा वर्ग के लिए अतीत का अनुशीलन अति महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा वे समझ सकेंगे कि पहले हम रूया थे और उसी के आधार पर वे अपना भविष्य भी गढ़ डालने का प्रयास करेंगे। इससे भारत के प्राचीन विरासत के प्रति हमें गर्व बोध होगा और हम आश्वस्त भी हो जाएंगे। धन बल या बाहुबल को नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बल को ही भारत सर्वाधिक महत्व देता आया है।
1: किसी किसी का कहना है कि धर्म ही हमारे जीवन की अधोगति का कारण है, परंतु स्वामी जी कहते हैं,
0: तुम लोगों ने अतीत को ठीक से नहीं समझा, धर्म को ठीक से नहीं समझा। धर्म ने ही हमें जीवित रखा है, और यदि हम धर्म को ना भूलें तो अब भी वो हमारी रक्षा करेगा।
2: तभी तो वे हमें बार बार याद दिलाते थे उपनिषद की ये अमर वाणी,
0: उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुको नहीं, निबोधत अर्थात सत्य को जानो, अंधकार से आलोक का प्राकट्य नहीं होता, अतीत के भारत वर्ष से प्रकाश का विकिरण हो रहा है और वही हमारा पथ प्रदर्शक है।
1: इसलिए तरुणों के प्रति स्वामी जी का आह्वान है,
0: अपनी शक्ति को व्यर्थ बर्बाद न होने देना, अतीत की ओर देखा, जिस अतीत ने तुम्हें अनंत जीवन रस प्रदान किया है उससे पुष्ट हो, यदि अतीत की परंपरा का सदुपयोग कर सको, उसके लिए गौरव का बोध कर सको, तो फिर उसका अनुसरण कर अपना पथ निर्धारित करो, वो परंपरा तुम्हें दृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित करेगी और इसके फलस्वरूप तुम देखोगे कि देश सामंजस्यपूर्ण समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो रहा है। इसी विधि से अपेक्षाकृत अत्यल्प समय के भीतर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा। वैज्ञानिक गण नए नए उपायों की खोज में तरह तरह के परीक्षण निरीक्षण किया करते हैं, परंतु वे भी क्या उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त अतीत काल की प्रज्ञा पर निर्भर नहीं करते? अणु का आविष्कार आकस्मिक रूप से नहीं हो गया, अनेक युगों के अनेक वैज्ञानिकों द्वारा जी तोड़ खोजों के बाद अंततः वर्तमान शताब्दी में आणविक शक्ति के अस्तित्व का पता चला है। उसी प्रकार इस क्षेत्र में भी हमें अपने अपने पूर्ववर्तियों के प्रयास को स्मरण रखना होगा।
2: स्वामी जी ने और भी कहा है कि उन्नति की प्रथम सीढ़ी स्वाधीनता है, स्वाधीनता के अभाव में हम बद्ध हो जाते हैं और इससे क्रमशः हमारा विनाश अवश्य संभावी है, इसीलिए युवकों को पूर्ण स्वाधीनता देनी होगी, किंतु साथ ही उनके पथ के निर्धारण में सहायता भी करनी होगी। युवकों को केवल स्वामी जी की ये चेतावनी याद रखने की आवश्यकता है कि वे युगों से संचित अनुभवों के भंडार से दृष्टांत लेकर लाभ उठाएं। इस महान उत्तराधिकार को स्वीकार करना उनका परम सौभाग्य है।
0: युवक गण अशांत तथा उपाम होते हैं और ये उनकी प्राण शक्ति का परिचायक है। उन्हें पग पग पर निषेध की डोरी से बांधकर अच्छा लड़का बनाए रखने से वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बल्कि उन्हें और भी अशांत होने को प्रोत्साहित करना होगा। हम कहीं उन्हें पीछे से पकड़े न रहें। नवीन बंदरगाह की ओर उसकी यात्रा शुरू हो गई है, उनके पाल में हवा लग रही है। वयस्कों का कार्य है उन्हें यात्रा पथ में दृढ़ बनाए रखने में सहायता करना, ताकि वे कहीं दिशा न भूल जाएं। तभी आज के युवक हमारे अतीत की धरोहर को और भी समृद्ध कर सकेंगे। उनके मार्ग में मेरा आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं सदैव उनके साथ रहेंगी।
1: एक नए भारत की रचना, यही स्वामी जी का ध्यान, ज्ञान एवं कल्पना थी। उन्होंने बार बार देशवासियों को पुकार कर कहा था,
0: जागो, नींद से जागो।
1: उन्होंने बार बार हमें देश से प्यार करना सिखाया, भारतवासियों से प्यार करना सिखाया। अपनी बात वे कई बार दोहराते रहे ताकि हम उसे भूलें नहीं।
0: मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के युवकों पर है। उन्हीं से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंधी सारी समस्या का समाधान करेंगे। ए वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। तुम चिल्लाकर कहो कि अज्ञान भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, दलित भारतवासी, सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, मेरी जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है।
2: स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया है कि भारत का नव निर्माण हम भारत के प्रति अगाध प्रेम रखकर ही कर सकते हैं। जिस किसी ने स्वामी जी के अग्नि वचनों को छुआ, उसी में राष्ट्रीयता की लहर आई है। इसी से महात्मा गांधी ने कहा था,
3: मैंने स्वामी जी के ग्रंथ बड़े ही मनोयोग के साथ पढ़े हैं और इसके फलस्वरूप देश के प्रति मेरा प्रेम हजारों गुना बढ़ गया है।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है,
4: पता नहीं कि आज की युवा पीढ़ी में से कितने लोग स्वामी विवेकानंद के लेख और व्याख्यान पढ़ते हैं, पर मेरी पीढ़ी के बहुत से नवयुवक उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। और मेरा विचार है कि वर्तमान पीढ़ी भी यदि स्वामी जी के व्याख्यान और रचनाओं का अनुशीलन करे तो उसका बड़ा ही कल्याण होगा।
2: नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकारा है।
5: स्वामी विवेकानंद का धर्म राष्ट्रीयता की उत्तेजना देने वाला धर्म था। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से राजनीति का एक भी संदेश नहीं दिया, पर जो कोई भी उनकी रचनाओं के संपर्क में आया उसमें अपने आप ही देशभक्ति और राजनैतिक मानसिकता उत्पन्न हो गई।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको बता देते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम जीवन सौरभ। अक्षय निधि कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:15 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:20 से। दुर्गा भाभी की जयंती पर केंद्रित कार्यक्रम वतन का राग सुनेगा 8 बजे से। रानी दुर्गावती के युद्ध की विजय गाथा आपको सुनवाएंगे इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम में, समय 8:30। टेक क्रू कार्यक्रम में सुनेगा साइबर क्राइम पर चर्चा शिवेंद्र शुभंकर से रानी रैकवार की, समय 9:00 से। विश्व कपास दिवस पर केंद्रित हमारा विशेष कार्यक्रम सुनेगा 9:30 से। 10 बजे आप सुन सकेंगे परिक्रमा और 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम काव्य कुंचन में रश्मि रथी का भाग 17। प्रोफेसर मेघनाथ साह पर केंद्रित कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक सुनिएगा 11 बजे से और 11:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। ये थी जानकारी कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।